0: Nasıl inşaatı tatbanaşın edikrim sanatçı, sengeci akashvani lenişot. Gatoğu çocuğu geçtiğim kasada akashvani deline samaçı prabat yandı sinne morning news sanatçı.
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की तीन देशों की यात्रा संपन्न, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ विस्तृत वार्ता के बाद स्वदेश रवाना। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। वियतनाम सरकार ने स्पीड बोट दुर्घटना की जांच के आदेश दिए, दुर्घटना में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत। अमेरिका ने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के होर्मुज जल डमरू मध्य में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद ईरान पर नए हमले शुरू किए, ईरान ने जल मार्ग को अगली सूचना तक किया बंद। मौसम विभाग ने अगले चार दिन तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में बहुत तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। इंग्लैंड ने नॉर्वे को 2-1 से हराकर फीफा विश्व कप के सेमीफाइनल में प्रवेश किया और लिंडा नोस्कोवा ने कैरोलिना मुकोवा को हराकर अपना पहला विंबलडन टेनिस खिताब जीता। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। इस दौरान श्री मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ व्यापक बातचीत की। भारत और न्यूजीलैंड ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया है। इस दौरान रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन और डेयरी तथा पशुपालन सहित कई प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। ऑकलैंड में सामुदायिक कार्यक्रम में भारतीय मूल के 10,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। श्री मोदी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और न्यूजीलैंड का भविष्य आपस में जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री लक्सन ने भारत को विश्वसनीय मित्र बताते हुए न्यूजीलैंड की प्रगति में भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की भी उन्होंने प्रशंसा की। श्री मोदी ने श्री लक्सन के शानदार आतिथ्य के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से भारत न्यूजीलैंड संबंधों में एक नया अध्याय शुरू हुआ है। श्री मोदी ने 40 वर्ष बाद भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा के बारे में कहा कि अगली यात्रा

0: में इतना समय नहीं लगेगा।
1: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है, पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूं हम सफल होंगे।
0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की तीन देशों की यात्रा के महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं। प्रधानमंत्री मोदी की तीन देशों की यात्रा के दौरान भारत ने इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ व्यापार, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा, नवाचार, शिक्षा और लोगों के बीच आपसी संबंधों जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार किया है। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। इसके अंतर्गत कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली स्थित पूसा परिसर में पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस अवसर पर वे देश भर से आए लगभग 17,000 वृक्ष मित्रों से संवाद करेंगे। श्री सिंह वृक्ष मित्रों के साथ पूसा परिसर में वृक्षारोपण अभियान में भी हिस्सा लेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की जन केंद्रित विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि गृह मंत्री कार्यक्रम के दौरान अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र गांधीनगर में महत्वाकांक्षी सामूहिक पौधारोपण अभियान की शुरुआत भी करेंगे।
2: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने संसदीय क्षेत्र को देश में सबसे हरा भरा बनाने के लिए महत्वाकांक्षी गांधीनगर हरियाली लोकसभा अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, जिसके तहत इस साल गांधीनगर संसदीय क्षेत्र में 1.25 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। इस अभियान के तहत वन विभाग अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में वन कवच मॉडल के माध्यम से लगभग 60 लाख स्वदेशी पौधे लगाएगा, जो त्वरित पर्यावरण सुधार के लिए जापानी मियावाकी पद्धति का गुजराती स्वदेशी संस्करण है। अपने दौरे के आखिरी दिन श्री शाह कल गांधीनगर में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी परिसर में 11वीं इंटरपोल डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट ग्रुप बैठक और पहली अंतर्राष्ट्रीय अन्वेषक अपराध प्रतियोगिता का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वे देहगांव में नवनिर्मित एपीएमसी सब्जी मंडी का भी लोकार्पण करेंगे। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: उत्तर प्रदेश सरकार व्यापक पौधारोपण अभियान के अंतर्गत आज 35 करोड़ पौधे लगाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ 2026 का शुभारंभ करेंगे। वे एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और आरकेबीके के पास ताल रिंग रोड के किनारे पौधे लगाएंगे। एक रिपोर्ट।
3: 27 विभागों के समन्वय से चलाए जाने वाले इस विशाल वृक्षारोपण अभियान में वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग सर्वाधिक 15 करोड़ 50 लाख पौधारोपण करेगा। ग्राम्य विकास विभाग 10 करोड़, कृषि विभाग 3 करोड़ 25 लाख, उद्यान विभाग 1 करोड़ 50 लाख और पंचायती राज विभाग 1 करोड़ 22 लाख पौधे लगाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे भी 5.5 लाख पौधे लगेंगे। महाअभियान 2026 में इस वर्ष समरस वन, समृद्धि वन, कृषि वन, ऊर्जा वन, कपि वन समेत अनेक नवीन वन तैयार किए जाएंगे। महर्षि चरक औषधि वन की शुरुआत 5 जून यानी विश्व पर्यावरण दिवस पर की गई है। इस अभियान का प्रमुख हिस्सा मिशन छाया, अविरल धारा पौधारोपण, सहजन भंडारा और आम भंडारा भी होगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित प्रस्तावित विधेयकों की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति ने गोवा में अपनी 2 दिवसीय परामर्श प्रक्रिया पूरी कर ली है। इस दौरान समिति ने राज्य सरकार, राजनीतिक दलों, विधायकों, संवैधानिक विशेषज्ञों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, नागरिक समाज के प्रतिनिधियों और मीडिया से विचार विमर्श किया। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
2: पहले दिन समिति ने गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, संवैधानिक विशेषज्ञों, राज्य निर्वाचन आयोग तथा गोवा विश्वविद्यालय के अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया। दूसरे और अंतिम दिन कल समिति ने गोवा विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर गणेश गांवकर, विपक्ष के नेता यूरिया लेमाव तथा विभिन्न राजनीतिक दलों के विधायकों से चर्चा की। इससे पहले समिति के अध्यक्ष और सांसद पीपी चौधरी ने कहा कि एक साथ चुनाव कराने से सुशासन को बढ़ावा मिलेगा, चुनावी खर्च कम होगा और बार बार होने वाले चुनावों से होने वाले प्रशासनिक व्यवधान में कमी आएगी। समिति अब अपने राष्ट्रव्यापी परामर्श अभियान के अगले चरण में लखनऊ का दौरा करेगी। महेश चोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
1: वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हुन ने फुकवोक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। इस हादसे में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। ये हादसा उस समय हुआ जब 36 लोगों को लेकर जा रही स्पीड बोट फुकवोक द्वीप के पास रट नगोवाई टापू के निकट अचानक ऊंची लहरों की चपेट में आकर पलट गई। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने मृतकों की सूची जारी की है। इनमें 10 लोग तमिलनाडु, 3 आंध्र प्रदेश और 2 केरल के रहने वाले थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के होर्मुज जल डमरू मध्य में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद अमरीका ने ईरान पर नए हमले शुरू कर दिए हैं। एक रिपोर्ट।
3: अमेरिका की सेना ने कहा है कि हमले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर किए गए हैं। इस बीच ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को अगली सूचना तक बंद कर दिया है। ईरान की नौसेना ने कहा कि इस इलाके में अमेरिका का दखल खत्म होने तक किसी भी जहाज को इस रास्ते से निकलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नौसेना ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य की इस घटना को लेकर अमेरिका की किसी भी कार्रवाई का कड़ा जवाब दिया जाएगा। अमेरिका ईरान से सार्वजनिक रूप से होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर हमला नहीं करने का आश्वासन चाहता है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि तनाव के बावजूद ईरान के साथ बातचीत जारी रहेगी। ईरान ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य उसके नियंत्रण में ही रहेगा और इस मार्ग से गुजरने वाले जहाजों को शुल्क देना होगा। ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही के लिए 2 अलग अलग रास्तों का प्रस्ताव दिया है, लेकिन ईरान ने इस तरह के प्रस्ताव को पहले ही खारिज कर दिया था। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिष्ठित पार्श्व गायिका एस जानकी अम्मा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एस जानकी अम्मा का निधन संगीत और संस्कृति जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ मुकेश कुमार बल।
4: फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने आज तड़के फ्लोरिडा में नॉर्वे को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। इंग्लैंड के जूड बेलिंगहम ने अतिरिक्त समय में 2 गोल करके इंग्लैंड को जीत दिलाई। इंग्लैंड तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। स्पेन और फ्रांस पहले ही सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुके हैं। उधर लंदन में कल रात विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में 21 वर्षीय लिंडा नोस्कोवा ने चेक गणराज्य की करोलिना मुकोवा को 6-2, 5-7, 6-3 से हराकर महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। इस बीच पुरुष सिंगल्स के फाइनल में आज विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी यैनिक सिनर का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार आज रात 8:30 से खेला जाएगा। महिला डबल्स के फाइनल में आज 10वीं वरीयता प्राप्त गुओ हान्यू और क्रिस्टीना म्लाडेनोविच की जोड़ी का मुकाबला दूसरी वरीयता प्राप्त गैब्रियला डब्रोवस्की और लुइसा स्टेफनी की जोड़ी से होगा। ये मैच शाम 5:30 से शुरू होगा। और इंग्लैंड ने कल रात साउथहैम्पटन में 5वें और अंतिम टी20 क्रिकेट मैच में भारत को 56 रन से हराकर श्रृंखला 4-0 से अपने नाम कर ली है।
1: और अभी अभी प्राप्त समाचार के अनुसार अमेरिका के कंसास में जारी क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड एक एक गोल से बराबरी पर हैं। मौसम विभाग ने अगले चार दिनों तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। इनमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश और ओडिशा शामिल हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
5: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाई है। नवभारत

0: ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के पीएम के बीच सहमति। पंजाब केसरी ने आईएनएस महेंद्रगिरी के जलावतरण पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान को प्रमुखता दी है। भविष्य के युद्ध सिर्फ एआई से नहीं सैनिकों के दम पर जीते जाएंगे। जनसत्ता ने श्रीराम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा का बयान दिया है, चढ़ावा चोरी कलंक, व्यवस्था में जल्द सुधार। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर बरसात में बेहाल होते शहरों पर विश्लेषण दिया है। हर बरसात में देश के शहरों में लोग जलभराव और उससे जुड़ी समस्याओं से जूझते हैं, इसके बाद भी नगर निकायों का काम करने का तौर तरीका नहीं बदला है। अखबार ने लिखा है कि अब यह जरूरी हो गया है कि संसद में एक विशेष सत्र बुलाकर बिगड़ते शहरीकरण को संवारने के लिए कोई सार्थक बहस की जाए। दैनिक भास्कर ने राष्ट्रीय राजधानी के मौसम का मिजाज दिया है, कमजोर पड़ा मॉनसून, अब एक हफ्ते झेलनी पड़ेगी गर्मी।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 3 देशों की यात्रा संपन्न। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। वियतनाम सरकार ने स्पीड बोट दुर्घटना की जांच के आदेश दिए, दुर्घटना में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत। अमेरिका ने इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के होर्मुज जल डमरू मध्य में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद ईरान पर नए हमले शुरू किए, ईरान ने जल मार्ग को अगली सूचना तक किया बंद। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में बहुत तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और इंग्लैंड ने नॉर्वे को 2-1 से हराकर फीफा विश्व कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम नरेश मागो। द हेडलाइंस: Prime Minister Narendra Modi concludes his 3-nation tour of Indonesia, Australia and New Zealand. Departs for India after holding extensive talks with New Zealand Prime Minister Christopher Luxon. Vietnam government orders probe into speedboat tragedy that killed 15 Indian tourists. US launches new round of strikes against Iran after IRGC forces attack container ship transiting Strait of Hormuz. Iranian Navy closes the vital sea corridor until further notice. IMD forecasts heavy rainfall across northern and eastern parts of the country for next 4 days. England beats Norway 2-1 to reach FIFA World Cup semi-finals. And Linda Noskova beats Karolina Muchova to win first Wimbledon tennis title. Prime Minister Narendra Modi has concluded his 3-nation tour of Indonesia, Australia and New Zealand and departed for India after holding extensive talks with New Zealand Prime Minister Christopher Luxon. India and New Zealand elevated their bilateral ties to a strategic partnership and signed several agreements and memoranda of understanding across key sectors. These include defence, tourism, sports, disaster management and dairy and animal husbandry sectors. A major highlight of the visit was the community event at Auckland's Spark Arena, attended by over 10,000 members of the Indian diaspora. Addressing the gathering, Mr. Modi stated that the future of India and New Zealand is intertwined and the bilateral trade agreement will accelerate India's journey towards a developed nation.
3: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, हवाएं हमारे साथ है, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है। पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूं हम सफल होंगे।
2: On the occasion, Prime Minister Luxon described India as a trusted friend, praised the contribution of the Indian community to New Zealand's progress and appreciated Prime Minister Modi's leadership. Prime Minister Modi thanked Prime Minister Luxon for his warm hospitality and said the visit had opened

0: नमगेला चुकतान सिरिया चुके सलकनी लुगुन सनके लंगे से आकाशवाणी लेने सने जिकताइन
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: कसता नमगेलांचुक तांसरियांचुके सलकनी इलुबांस नजात

0: Ibu Akashwani Lin casting ishuran deske dolmani nasulgun sanajat Shilun Narendra Modi Kongrai Gel Cup Asum Indonesia Australia tang New Zealand de six score charte New Zealand de Shilun Christopher Luxen tangyam pa sungdo zat estine gagala loxte skotenok gagartang New Zealand Gel Cup niski pare delduksika sungdo zate laska khachan dige thoga chadone ikchika chakstak zatenok ilaska kun Shungskup, Scorians, Ersalians, Disaster Management, Omi Chalatang, Tutu Guspel Laskakun Teteno, Koi, Eggland, Spark, Erini, Six Korzatus, Jalzum Skoti Yut Kangunla, Sungsha Dazinjik, Izuk Molazats.
1: New Zealand के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी हैं, values भी हैं और एक commitment भी है। भारत New Zealand की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, हवाएं हमारे साथ हैं, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ हैं, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है। पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूं हम सफल होंगे 40 साल के बाद कोई भारतीय पीएम न्यूजीलैंड की धरती पर आया है ये मेरा सौभाग्य है मैं न्यूजीलैंड के सभी निवासियों के लिए आप सभी लोगों के लिए 140 करोड़ भारतीयों की शुभकामनाएं लेकर आया हूं साथियों प्रधानमंत्री के रूप में भले ही मेरा पहला न्यूजीलैंड दौरा है लेकिन 25-30 साल पहले जब मैं किसी सरकार में भी हिस्सा नहीं था सार्वजनिक जीवन में मुझे कोई जानता नहीं था तब भी मुझे यहां न्यूजीलैंड आने का अवसर मिला था
0: ग्यारे एआई सेमीकंडक्टर Tang electronic growth in Hyderabad khak chinmo lende nokmolto ebo shitlon render modi Mixul Nangshin in Okmoltesh Tsushung Lonpo Ashwana Vishwana Vemolteno AYSEA Chosne Hyderabate Industry Leader Town Hall in Anga Daldik Zatiyut Kanzatku Skapslash Tsushung Lonpo Ashwana Vishwana Ve Gagare IT Laskare Software Service Model in Anga Yuja Kyonste AI Bo Service Model Etsula Jocheslash Juapulteno Koi Gagare Stigma Kagan Anga Yerges Artificial Intelligence Semiconductor electronic manufacturing tang advanced infrastructure tang delut kun nistung chu jabtun gagar yergeschan gelkhabe mikshi nangshin laborte yotenok molto food safety and standard authority of india fssai swegi Instamate Nyotsung Tankan Guni Food Safety and Standard Act Nistung Tugi Kapkal Churuk Zerte Shukshi Mangpo Jo Testingni Kakap Azgur Spelte Yotenok Social Media Post Shigenanga FSSAI Business Food Business Operator La Nyotsung Tankan Guni Karji Rulba Ningpa Shesma Tang Jan Gala Mankane Zazrik Swagi Instamate Tangan Yotkane Ka Jipsal Shatkos Molte Ka Spelte Yoteno. Kamze Tang Nansans Pande Lunkung Se Chosne National Health Mission Nangloga Gyalchil Dane Mitang Se Jagas Kapsla Zabare Webinar Series Chik Lak Lenina Galitora Gozuk Zate Inok Ibo Lo Gangpo Shizgia Partang Tsurlene Pia Nasajik Tang Galkak Tang Ujungas Degun Nyampo Kyonches Tang Rang Lasir Soma Gozuk Joste Transpo Luskan Gun Tan Tupches Laglenina Kyonkan Ne Nyamyong Gun Shaches Latang Galkap Gangpenanga Kamsde Gale Jabstoks Tangchesla, Stanji Chochesla, Spaspe Lda Tang Tupchesla, E. Lastirpo, Guzuk Zateno Akashwani Legute, Ladarsena Sul Nimena, Lanji, Nato Chusur, Gunimichusur Nistan, Skarmangapchunga, Pito Chusur Shnatang, Pito Chusul Duntan, Skarmachunga Gunika, Sanchesla, Pulinjik Tayot, Yang Sankan Landesla, E. Nasul Gun, Chizos Turkey Platform Soso, YouTube, Facebook page. X handle tang website kunikang Sanchesla Pulinchik tangyot aga shwani lenita nasul ton.

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: कसता अलग अलग फिल्मलो लता मंगेशकर तं किशोर कुमार ने सनजत लूर चमकन आनंद बख्शी आलो आंजरेकन आर डी बर्मन
1: कुछ हमको
2: क्या
1: कुछ तुमको

0: 12 जुलाई इतवार और जेके बैंक के ऑफिशियल ब्रॉडकास्ट जेके बैंक डायरी का ताजा शुमारा लेकर हम हाजिर। आप सभी का प्रोग्राम में इस्तकबाल और हार्दिक अभिनंदन।
1: स्कैन करें और 10,000 रुपए अपने अकाउंट में पाएं। वाओ यार,
2: खबरदार, QR कोड स्कैन करके पैसे भेजे जाते हैं, रिसीव नहीं किए जाते। तो अगर आपको भी कभी ऐसा मैसेज आए तो समझ लेना कि एक फ्रॉड है। जानकारी ही समझदारी है। इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय जम्मू एंड कश्मीर बैंक, आपका अपना बैंक।
0: दोस्तों, जेके बैंक ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में खेलकूद की सरगर्मियों को बढ़ावा देने का बेड़ा उठाया है। और खास तौर से अगर हम फुटबॉल का जिक्र करें तो जेके बैंक फुटबॉल एकेडमी ने कई ऐसे नामी गिरामी प्लेयर्स पैदा किए हैं जिन्होंने न सिर्फ मकामी सतह पर बल्कि कौमी और बैन अलाकवामी सतह पर भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। इस हवाले से लद्दाख में कायम जेके बैंक फुटबॉल एकेडमी में जेर तरबियत खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ का हौसला बढ़ाने के लिए बैंक के MD और CEO अमिताभ चटर्जी ने बजाते खुद मुलाकात की। इस दौरान बैंक के चीफ जनरल मैनेजर इम्तियाज अहमद भट्ट, जोनल हेड लद्दाख सेवांग दोर्जे, MD एंड CEO के स्पेशल सेक्रेटरी तनवीर हुसैन, बैंक के स्पोर्ट्स एंड कल्चर डिपार्टमेंट के AGM बिलाल अहमद कुछे, क्लस्टर हेड लेह और दीगर अफसरान और मुलाजमीन मौजूद थे। अपने दौरे के दौरान MD और CEO ने नौजवानों की जिंदगी में खेल कूद की अहमियत को उजागर करते हुए इसे जिस्मानी और जहनी सेहत की नशोनुमा के लिए निहायत ही अहम करार दिया और ये भी कि इससे जिंदगी में नज्म जब्त, वक्त की पाबंदी और टीम स्पिरिट के जज्बात परवान चढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ टैलेंटेड होना काफी नहीं है बल्कि प्रॉपर ट्रेनिंग और प्रैक्टिस उसे निखरने और सवरने का मौका देते हैं। उन्होंने कहा कि लद्दाख में इस एकेडमी का कायम यहाँ के मकामी नौजवानों की बेपनाह सलाहियतों को सही सिमत और सही रहनुमाई फराहम कराना है ताकि लद्दाख के नौजवान भी इस अहम खेल के रमूज औकाफ से मानूस हो जाएं और कौमी सतह पर फुटबॉल में अपना नाम बनाएं। CGM इम्तियाज अहमद ने जेर तरबियत खिलाड़ियों का आह्वान किया कि वो तनदही से ट्रेनिंग हासिल करें ताकि इस एकेडमी के कयाम के अगराज व मकासद हासिल किए जा सकें। एकेडमी के कोच रिगजिन अंगदू ने एकेडमी की तरफ से MD और CEO का शुक्रिया अदा किया और उम्मीद जाहिर की कि उनका ये दौरा खिलाड़ियों के लिए हौसला अफजा साबित होगा और वो मन लगाकर पूरे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ इस एकेडमी का नाम रोशन करने में जुट जाएंगे। वाजह रहे कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जेके बैंक ने 3 फुटबॉल एकेडमियां कायम करके यहां के मकामी नौजवानों के स्पोर्ट्स टैलेंट को निखारने में कई दहाइयों से काबिले कदर काम किया है।
3: एक जरूरी इतला, जम्मू कश्मीर बैंक के उन बुजुर्ग, माजूर और बीमार ग्राहकों से गुजारिश की जाती है जो किसी वजह से जम्मू कश्मीर बैंक की शाखों पर नहीं आ सकते हैं कि वो जेके बैंक की डोर स्टेप बैंकिंग से फ़ायदा उठाएं, जहां बैंक के नुमाइंदे उनके घर आकर मुख्तलिफ बैंकिंग सहूलियात जैसे KYC डॉक्यूमेंट्स वसूल करना, लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना, डिमांड ड्राफ्ट बनवाना, कैश डिपॉजिट करना या अपने अकाउंट से कैश निकालने जैसी सहूलियात वगैरह शामिल हैं, नॉमिनल चार्जेस के एवज आपको घर बैठे मुयस्सर होंगी। लिहाजा आज ही अपनी बैंक शाखा से राबता करें और इन सहूलियात से फायदा उठाएं।
4: दोस्तों, मर्दमशुमारी 2027 के हवाले से तैयारियां शदोमत से जारी हैं और मुल्क के

0: साथ जम्मू कश्मीर में भी इस हवाले से आगाही मुहिम के जरिए आम लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इस जिमन में बेदारी मुहिम को मजीद मुअसर बनाने के लिए डायरेक्टरेट ऑफ सेंसस ऑपरेशंस और जम्मू कश्मीर बैंक के माबेन गुज़श्ता दिनों एक एमओयू पर दस्तखत हुए, जिस पर बैंक की जानिब से सीजीएम आशुतोष सरीन ने जबकि सेंसस डिपार्टमेंट की जानिब से डायरेक्टर सेंसस ऑपरेशंस जम्मू कश्मीर अमित शर्मा ने दस्तखत किए, जिस दौरान ज्वाइंट चीफ प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर अरुण कुमार, डिप्टी चीफ प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर मनमीत सिंह, बैंक के जनरल मैनेजर मोहम्मद मुजफ्फर वानी, डीजीएम सईद आदिल बशीर और दोनों इदारों के दीगर ऑफिसरान भी मौजूद थे। इस एमओयू की रूह से जम्मू कश्मीर बैंक सेंसस के मुतल्लिक जानकारी के हवाले से अपनी ब्रांचेज में डिस्प्ले बैनर्स, अवेयरनेस मटीरियल, पैम्पलेट्स, स्टैंडीज वगैरह में मर्दमशुमारी डिपार्टमेंट के साथ सहयोग करेगा, जबकि मुख्तलिफ जानकारी प्रोग्रामों में भी बैंक अपने डिजिटल साइनेज नेटवर्क को भी बरोएकार लाएगा, ताकि इस मुहिम को कामयाब बनाने में बैंक का विशाल नेटवर्क भी अपना योगदान दे।
1: ऑनलाइन लोन फ्रॉड से बचें। फ्रॉडुलेंट लोन एप्स और फेक कॉल्स आपको अपनी मालूमात शेयर करने पर मजबूर कर सकती हैं। अपने आप को और अपने पैसे महफूज रखें। सिर्फ भरोसेमंद ऑथराइज्ड बैंक वेबसाइट्स या ऐप का इस्तेमाल करें।
2: याद रखें, जल्दी पैसे का मतलब हमेशा अच्छा नहीं होता। पहले तस्दीक करें, फिर अप्लाई करें। महफूज रहिए, होशियार रहिए। इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय J&K बैंक, आपका अपना बैंक।
3: सामईन, जम्मू कश्मीर बैंक ने गुज़श्ता दिनों जनरल मैनेजर राकेश मगोत्रा को बैंक के नए चीफ कंप्लायंस ऑफिसर व ग्रुप कंप्लायंस ऑफिसर के बतौर तैनात किया, जो अगले 3 बरस तक इस ओहदे पर फाइज रहेंगे और जनरल मैनेजर पीर मसूद अहमद की जगह लेंगे। राकेश मगोत्रा एक मंझे हुए बैंकर हैं जिनके पास 30 साल का बैंकिंग तजुर्बा है, जिस दौरान उन्होंने कई अहम जिम्मेदारियां निभाई हैं, जिनमें जोनल हेड दिल्ली, एडवाइजर चेयरमैन, रिटेल क्रेडिट हेड वगैरह शामिल हैं। राकेश मगोत्रा NIT जयपुर, IIM अमृतसर से पढ़े हुए हैं और इस वक्त IIM जम्मू में PhD इन इकोनॉमिक्स कर रहे हैं। बैंकिंग के मुख्तलिफ शोबों में उनकी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ साथ मुख्तलिफ नामी गरामी इदारों से हासिल एकेडमिक एक्सलेंस से बैंक को उनके इस नए रोल से काफी इस्तेफादा होगा और कंप्लायंस मैकेनिज्म को भी मजीद फाल बनाने में मदद मिलेगी।
4: अरे आप ये लाइन तोड़ के कहाँ जा रहे हैं?
5: अरे आने दीजिए, सीनियर सिटीजन है।
6: अब मेरे खाते से 350 रुपए निकाल दो।
4: 350 रुपए में क्या आता है?
6: शहर से मेरा नाती आ रहा है, उसके लिए रिमोट वाली कार आती है।
7: J&K बैंक, जरूरत छोटी हो या बड़ी, हम आपकी जरूरतों की कद्र करते हैं। J&K बैंक, आप लोगों का बैंक।
8: दोस्तों, आवाम में समाजी तहफ़ स्कीमों के मुतल्लिक बेदारी पैदा करने के हवाले से जम्मू कश्मीर बैंक हमेशा से ही सरगर्म रहा है और इस सिलसिले में गुज़श्ता हफ्ते कॉलेज ऑफ एजुकेशन श्रीनगर में बैंक ने एक आला सतही अवेयरनेस कम सैचुरेशन कैंप का इनेकाद किया, जिसके लिए हुकूमत की खजाना वजारत और RBI ने इश्तराक किया था। टुगेदर टुवर्ड्स फाइनेंशियल एम्पावरमेंट के थीम पर मबनी इस एक रोजा कॉन्फ्रेंस में RBI की CGM निशा नाम्बियार, RBI के रीजनल डायरेक्टर चंद्रशेखर आजाद, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर रिफत आफ्ताब कुरैशी, बैंक के चीफ जनरल मैनेजर इम्तियाज अहमद भट्ट, जनरल मैनेजर खुर्शीद मुजफ्फर, नोडल प्रिंसिपल कॉलेजेस कश्मीर डिवीजन डॉक्टर सीमा नाज, ज्वाइंट कमिश्नर श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन नुजरत कुरैशी के अलावा मुख्तलिफ सरकारी महकमों के आला अफसरान ने शिरकत की। RBI की चीफ जनरल मैनेजर निशा नाम्बियार ने इस मौके पर कहा कि ऐसे प्रोग्राम मुनक्कद कराने के पीछे हमारा मकसद वाजह होता है कि आम लोग इन समाजी तहफ़ स्कीमों तक रसाई हासिल कर सकें जो हुकूमत ने उनके लिए मुहैया रखी हैं। इसके साथ साथ साइबर फ्रॉड्स के बढ़ते हुए रुझान पर भी काबू पाने के तरीके आम लोगों तक पहुँचाने के लिए ऐसे प्रोग्राम बड़ा अहम रोल अदा करते हैं। उन्होंने KYC और RKYC की अहमियत से भी शुरका को आगाह किया। RBI के रीजनल डायरेक्टर चंद्रशेखर आजाद ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में लगभग 60% से भी जायद अकाउंट्स में RKYC का अमल मुकम्मल कराया जा चुका है और आम लोग समाजी तहफ़ स्कीमों के हवाले से काफी जागरूक हैं, जिसके लिए जम्मू कश्मीर बैंक समेत तमाम बैंक दाद तहसीन के मुस्तहक हैं। इससे कबल JK बैंक के चीफ जनरल मैनेजर इम्तियाज अहमद भट्ट ने अपने वेलकम एड्रेस में कहा कि जम्मू कश्मीर में जन धन योजना के तहत 25 लाख अकाउंट्स खोले जा चुके हैं, जिनमें से 16 लाख अकाउंट होल्डर्स के पास रुपे कार्ड भी मौजूद है। इसके अलावा PMSBY में 31

0: फीसदी, पीएमजेजेबीवाई में 29 फीसदी और एपीवाई एनरोलमेंट में 25 फीसदी बढ़ोतरी देखने को मिली है। उन्होंने तमाम बैंक की तरफ से आरबीआई के मुंतजमीन को यकीन दिलाया कि जेके बैंक अपने लीड बैंक रोल में तमाम दीगर बैंक के साथ वजह किए गए अहदाफ को वक्त मुकर्रर में हासिल करेगा और इन स्कीमों के हवाले से अवामी जानकारी में भी इजाफा किया जाएगा ताकि इन स्कीमों के फवायद से कोई भी मुस्तहक महरूम न रहे।
1: दोस्तों, टेक्नोलॉजी और डिजिटाइजेशन ने दुनिया को बिल्कुल बदल कर रख दिया है और बैंकिंग का शोबा इस तब्दीली में पेश पेश है। रिवायती बैंकिंग के तरीके अब बड़ी तेजी से डिजिटाइज हो रहे हैं और सार्फीन भी अब ब्रांच विजिट्स के बजाय मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग या प्लास्टिक मनी का इस्तेमाल करके अपनी बैंकिंग एक्सपीरियंसेस को आसान बनाने के साथ साथ अपना वक्त भी बचाते हैं, जो दूसरे अहम कामों में सर्फ किया जा सकता है। लेकिन जहां इस बदलाव से हमारे लिए आसानियां पैदा हुई हैं, वहीं हम पर इजाफी जिम्मेदारियां भी आन पड़ी हैं। हालांकि बैंकिंग के अंदर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का आला तरीन निजाम राइज है और टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, इनक्रिप्टेड ट्रांजैक्शंस और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशंस के जरिए इस निजाम को काफी मजबूत बनाया जाता है। ताहम चंद गुजारिशात पर अमल करके हम इस अमल को मजीद महफूज बना सकते हैं। हम बारहा गुजारिश करते हैं कि अपना पासवर्ड, ओटीपी, पिन या सीवीवी किसी के साथ शेयर ना करें, वो चाहे अपना हो या पराया। कोई भी बैंक फोन करके आपसे आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं मांगता। अगर आपको भी कभी ऐसी कॉल मौसूल हो तो इसे जल्द रिपोर्ट करें। अपने पासवर्ड जरा हटकर सेट करें और इनमें अल्फा न्यूमेरिक और स्पेशल कैरेक्टर्स का इस्तेमाल करें। अपना डीओबी, फोन नंबर, अपने प्यारे का नाम वगैरह पासवर्ड में इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो आसानी से गेस किया जा सकता है। डिजिटल बैंकिंग निहायत ही आसान, तेज और महफूज बैंकिंग का तरीका है, लेकिन इसका एक अहम असूल है, वो ये कि अपने अलावा किसी पर भरोसा ना करें, क्योंकि हमारे पास आदाद शुमार मौजूद है उन वाकयात का जहां घर के बच्चों, दोस्तों, मुलाजमीन या आपके जानकारों ने ही आपके साथ फ्रॉड करके अकाउंट का गलत इस्तेमाल किया है। एक और गलती जो हमें कभी नहीं करनी चाहिए वो ये है कि एटीएम या क्रेडिट कार्ड के पीछे अपना पिन नंबर लिखना। ये ऐसी ही बात है कि आप पेट्रोल और माचिस एक साथ रखते हैं, जिससे कभी भी आग लगने का खतरा रहता है। जेएनके बैंक का इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी निजाम मुल्क के बेहतरीन बैंक्स में शुमार किया जाता है और ऐसा शायद ही कभी हुआ हो कि बैंक के सिक्योरिटी लैप्स की वजह से ग्राहक का नुकसान हुआ हो। इसीलिए हम बारहा गुजारिश करते हैं कि जानकार बनिए और अपनी बैंकिंग एक्सपीरियंस को हमारे फुल प्रूफ सिक्योरिटी निजाम की बदौलत आसान और महफूज बनाए। जेएनके बैंक के बेशतर बैंकिंग प्रोसेसेस अब मुकम्मल तौर पर डिजिटाइज हो चुके हैं, लिहाजा हमारी इन सुविधाओं का लाभ उठाएं और अपने बैंक की हर सलाह पर अमल करके नुकसान से बचिए। हमारा मकसद आपके पैसे को महफूज बनाना है, जो आप बड़ी मेहनत से कमाते हैं। हमें इसकी फिक्र भी है और कद्र भी।
2: एक जरूरी इत्तला, अगर आप सरकार की तरफ से मुख्तलिफ स्कीमों में से किसी भी स्कीम से फायदा हासिल कर रहे हैं जिसका मुआवजा आपके बैंक अकाउंट में डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बदौलत आता है, तो आज ही अपने नजदीकी जम्मू कश्मीर बैंक की शाख या फिर नजदीकी खिदमत सेंटर पे जाके अपना आधार कार्ड लेके पहुंचे और अपने अकाउंट को आधार से लिंक करवाए। जम्मू कश्मीर बैंक की तरफ से वफाद आमा में जारी।
0: और अब इनामी सवाल की बारी।
3: दोस्तों, पिछले हफ्ते के शुमारे में हमने आपसे पूछा था कि जेएनके बैंक ने 2,00,000 करोड़ रुपए का बिजनेस किस साल में अचीव किया था।
0: इस सवाल का सही जवाब है साल 2023।
3: दोस्तों, इस हवाले से हमें कई सारे जवाब ईमेल के जरिए मौसूल हुए, जिनमें दिए गए बेशतर जवाब सही थे, लेकिन लकी ड्रॉ के जरिए चुने गए आज के हमारे तीन विनर्स हैं।
0: कश्मीर डिवीजन से रंगरेट श्रीनगर के शमीम अहमद, जम्मू डिवीजन से बिश्ना की श्रेया और लद्दाख से तैसरू कारगिल के आगा अब्बास।
3: इनाम जीतने वाले तीनों दोस्तों को हमारी तरफ से इनाम बहुत बहुत मुबारक।
0: और अब नोट करें आज का इनामी सवाल।
3: दोस्तों, आपको बताना होगा कि जम्मू कश्मीर लद्दाख में जेएनके बैंक कितनी फुटबॉल एकेडमीज चला रहा है।
0: इस सवाल का सही जवाब हमें 18 जुलाई शनिवार शाम 5 बजे तक आप मेल करके भेज सकते हैं। हमारा मेल आईडी है jkbankdiary@jkbmail.com। वाज़ रहे कि अपने जवाबात के साथ अपना नाम,
4: पता, फोन नंबर और जेके बैंक का 16 डिजिट वाला अकाउंट नंबर लिखना ना भूलें।
3: तो लेते हैं आपसे रुख्सत अगली इतवार तक, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ हमारी 24/7 बैंकिंग सर्विसेज के जरिए, और किसी भी मजीद जानकारी के लिए डायल कीजिए हमारा टोल फ्री नंबर
4: 1800890212
3: या विजिट करें हमारी ऑफिशियल वेबसाइट
4: www.jkb.bank.in।
5: स्कैन करें और 10,000 रुपए अपने अकाउंट में पाएं, वाओ यार।
6: खबरदार, QR कोड स्कैन करके पैसे भेजे जाते हैं, रिसीव नहीं किए जाते। तो अगर आपको भी कभी ऐसा मैसेज आए तो समझ लेना कि एक फ्रॉड है। जानकारी ही समझदारी है। इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय जम्मू एंड कश्मीर बैंक, आपका अपना बैंक।
7: अभी आप सुन रहे थे जेके बैंक डायरी, पेशकश कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, J&K बैंक।
8: जम्मू एंड कश्मीर बैंक की चिंताजत का नेटिक टीम J&K बैंक डायरी सनजत गजे आकाशवाणी लनिजोत गतोचुचोत और चुछादु कसता ठुगु नेडिग्रिम सनजर ठुगी स्किचल दिने डिग्रिम ने निजरंगे पेदोन मेडल स्कूल सक्ति टकनागे लोपटुगु ने चोक्स ने डिग्रिम ना चोक्स एक संचस लापुलिन डिग्रिम पुलकन स्तंजन मोटु ब्यां डिग्रिम में कोटिक जतकन सिरिंग छरोल।

0: Kasata istingna jinda gyatpe loptuk sonawangchuk chognas tsom jiksanazat.
1: Jule samala, deng santusi loptuk pomonam, ranska boyeg lopchon che jinduk. Rinchen ser tangda veskarik di, deni minyam kotpel kyon gozduk.
2: Wow!
1: Rangi skarik bojig mashez na, sangya sungwe chuski don mishez, tetus chikyal gosir pomonam, ranska boyeg lopchon che jinyot.
2: Wow!
1: Chikyal skarik sozla khaznayang, Ranska boyik lobjong met nani, lobjong met pe mitang chi khadiyot, din iskari gyancha da gozduk. Ranska rigi da po magyam na, jengi du lang oca ke gozyong, ranska met na shesik met payin, din ranska boyik kyob gozduk.
0: Tukjeche sona mangchuk kasata isting na jinda supelaski tangkongi topa kunne chongnas poem jiksana jat.
3: Julie, we will recite a poem called The Rainbow, written by Christina Rossetti. Boats sail on the rivers and ship sail on the seas, but clouds they'll sail across the sky as prettier than this. There are bridges on the river, as pretty as you please, but the boat that bridges heaven and overtop the trees, and build a road from earth to sky, as prettier far than this. Thank you.
0: Tukjeche laski tangkongi topakun kasata istingna jinda sumpe stanzi namsal shonas kavi tajik sanazat.
4: नमस्कार आज मैं आप सबके सामने सोहन लाल द्विवेदी जी की कविता हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं पढ़ने जा रही हूँ। हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं, नादान उम्र के कच्चे हैं, पर अपनी धुन के सच्चे हैं। जननी के जय जय गाएंगे, भारत की ध्वजा उड़ लाएंगे, अपना पथ कभी ना छोड़ लेंगे, अपना प्राण कभी ना तोड़ लेंगे, हिम्मत से नाता जोड़ लेंगे, हम हिमगिरी पर चल जाएंगे, भारत की ध्वजा उड़ लाएंगे, ये हम भय से कभी ना डर लेंगे, अपनी ताकत को तोड़ लेंगे, जननी के जय जय बोलेंगे, अपना सिर भी चलाएंगे, भारत की ध्वजा उड़ाएंगे। धन्यवाद।
0: तुझे स्तंजी नमसल कसाता इस्तीना जिंदा सुम पे पन्मा यांजस्तंग कुंगी ठुपा कुनी जोंगे जब रोज़ इसाना जाता।

0: Tugjeche panmeh angustan kongi chopa kun kasata istina jinda gyatpe nilun dans asal chone poem jiksan nazat.
1: Jule, we will read a poem called On the Grasshopper and Cricket. It is written by John Keats. The poetry of earth is never dead. When all the birds are fanned with the hot sun and hide in cooling trees, a voice will run from hedge to hedge about the new mown meat. That is the grasshopper's. He takes the lead in summer luxury. He has never done with his delight. For when tired out with fun, he rests at ease beneath some pleasant wheat. The poetry of earth is ceasing never. On a lone winter evening, when the frost has wrought a silence, from the stone there shrills the cricket song in round increasing ever, and seems to one in a drowsiness half lost, the grasshoppers among some grassy hills. Thank you.
0: Tugjeche zasalani don kasata istingna jinda supe jigme darul chona kavi tajik salazat.
2: नमस्ते, आज मैं आप सब के सामने रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता चांद का कुर्ता पढ़ने जा रहा हूँ। हट कर बेटा चांद, एक दिन माता से यो बोला, सिलवा दे माँ मुझे उनका मोटा एक जंगोला। सन सन चलती हवा, रात भर जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। बच्चे की सुन बात, कहा माता ने, अरे सलोने कुशल करे भगवान, लागे न तुझको जादू टोने, जलने की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ। एक माप में कभी नहीं तुमको देखा करती हूँ, कभी एक अंगुल भर चौड़ा कभी एक उनमोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा, घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की आंखों को तू दिखले पड़ता है। अब तू ये बता, नाप तेरा किस रोज लेवाए, सीधे एक जंगोला जो हर रोज बदन पे आए। धन्यवाद।
0: तुझे ची जिग में डाटुल कसाता इस तिंगना दिस की तंखों की ठोपा गुने चौने जुगनू जिक्सा नजर।

0: Gazata is Tina Zindag at Pezasal Chorne, Rabindranath Tagore Scholar Sanazat.
1: Namaskar. आज मैं रविंद्रनाथ टैगोर जी के विषय में बताना चाहती हूँ। रविंद्रनाथ टैगोर एक महान भारतीय कवि थे। उनका जन्म 7 मई 1861 में कोलकाता के जोर साको में हुआ था। इनकी माता का नाम शारदा देवी और पिता का नाम महाश्री देवेंद्रनाथ टैगोर था। वो एक दर्शन शास्त्री, चित्रकार और एक महान देशभक्त भी थे, जिन्होंने हमारे देश के राष्ट्रगण जनगण मन की रचना की। वो पहले ऐसे भारतीय बने जिन्हें गीतांजलि नामक अपने महान लेखन के लिए 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। टैगोर ने पूरे जीवन में एक दूसरे से प्यार और सौहार्द के रूप विचार को भी उपलब्ध कराया। भारतीय साहित्य के लिए उनका योगदान बहुत बड़ा और अविस्मरणीय है। धन्यवाद।
0: Tujiche Zasal Kasata is Tigna Zinda Dunpe Chang Lurab Chongas story Jigsa Nazar.
2: Julie, I will tell you a story about the fox and crow. Once upon a time, there was a crow. He had a piece of meat. A hungry fox came there. His mouth watered when he saw the piece of meat. He thought of a plan to get it. He praised the voice of crow. The fox set him to sing a song. When the crow opened his mouth to sing, the piece of meat fell down. The fox ate it and went away. The moral of the story is beware of letter. Thank you.
0: Kasata is tingna jinda gyatpe kunjang gelsan chonas kabir ka doha jiksa nazar.
3: Namaste. Main kabir ka doha padhne ja raha hu. Kabir gas na ninde jo paon tali hui, udi pade jab aankhi mein khari dohili hui. इसका अर्थ है कि इसमें कबीर जी छोटे को कमज़ोर समझकर उसे ना दबाने की चेतावनी दे रहे हैं कि हमें कभी घास को छोटा समझकर उसे दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि जब घास का एक छोटा सा तिनका भी आग में गिर जाता है तो बहुत दुख होता है। अर्थात हमें छोटा समझकर किसी पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।
0: Tukjechi kunjang gelsan kasa ta istingna jinda dun pe tuntu bangma chona joji jiksa nazat.
4: Jule tiringe Tomisam Budde Skola Mangyu Jijuin. Bot ki chosgyar shonsan gampo iskudu sori gangi. Skaps la yang ige nimiru waziz naz yap Tomi anui shaslo chonga lunpa jikpa nojin kawatang. Duglen nuspe ninstop chanjigyot pa kong yagar du ige lop tutang wazat. De nas kong chilo tugya sumchu soksum lo yagar du peps nas khaspa chenpo daze lipi karatang. Pandit la rikpe singe ngis kijabs la tuz na ige tang. Tangyan ngaso rikspe nas nam tharchin pajas nambo du peps tukreche.
0: Tukreche tundu bangmo. कासा ता इस तिंग ना जिंदा सुंपे देवा दोर्जे चौनेस कविता जिक्सा नजर।
5: नमस्ते, मैं आप सब के सामने जाड़ा कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। गया नवंबर शुरू दिसंबर, उछल कूदता बागा चंदन लेकर आया स्वेटर दो दो गरम कोट भी लाए गावे ओढ़े गावे गरम नजाई नई रूस में भरवाई जाड़े की जब होगी खिलखिल को फंसेगा चंदन खिलखिल और पड़ेगा ये पहाड़ा आखा कैसे आया जाड़ा। ये कविता हमें ये संदेश देती है कि जाड़ा अपने साथ खुशियां लेकर आता है। धन्यवाद।
0: तुझे देवा दोर्जे कसा ता इस तिंगना जिंदा दुन पे जिंगमे लमो नास्तंजे नामो चौनास पोएम जिक्सा नजात।
6: जुले वी विल रीड अ पोएम कॉल्ड मीडो सरप्राइजेस and it's written by Branded Flips. Meadow have surprises. You can find them if you look. Walk softly through the velvet grass and listen by the brook. You may see a butterfly rest upon a buttercup and unfold its drinking straw to sip the nectar up. You may scare a rabbit who is sitting very still. Though at first you may not see him, when he hops you will. A dandelion whose fuzzy hat was golden days ago has turned to airy parachutes that flutter when you blow. explore the meadow houses, the burrows in the ground, the nest beneath tall grasses, the ants' amazing mound. Oh, meadows have surprises and many things to tell. You may discover this yourself if you look and listen well.
5: Thank you.
0: Tubjeche jigme lamo rastan zinamo kasata istingne zinda gyatpe jigme lam yangpel chone joji jiksanazat.
7: Jule changmala last ji jikche na lelo pangte ingin rus ge jubdar lexpo jungo thalte chespa rangi thugu langmachit sulzangi da sumichut pain thalte dangpo rao langmachit tubkyang layo gongain punpo gyurtu jangdot pangos pain rangdot chen gi stonchen rub mitu skit tu sumi dang stun rangdot rangi gyuno jan lamamun tujeche
0: Tugjeche jingme dyangpel, kasata istingna jinda jipe stanchin khenrap chonas kavita jik sanazat.
8: Kar, main aap sabke samne Dr. Harivansh Rai Bachchan ji ki kavita Lalchi Bandar prastut kar raha hoon. Ek samay ki baat batao, kahin dino ka bhookha bandar khane ko kuch pa jaane ko ghoom raha tha idhar udhar. Diya dikhaye usko sune ghar mein rakha ek gada aur gade bhi bhune hue kurmure chane

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर दिल का मेल बॉक्स आपके लिए स्वागत करती हूँ मैं कुसुम। साथियों, इस कार्यक्रम में आप अपनी मेल और संदेश के जरिए पहुंचाते हैं हम तक अपनी पसंद और हम सुनवाने की कोशिश करते हैं आपकी पसंद के गाने। तो चलिए जल्दी से आप हमारा मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए। मेल आईडी है fmgoldairdaily@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9868868753। फिलहाल पहला गीत हमने जिसकी पसंद पर लिया है वो है कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान, फैजी फराज, फारिया फरहीम और ताहिरा की पसंद का। आइए सुनते हैं फिल्म मिलन का ये गीत।

बहुत सारे संदेश आप सभी साथियों के हम तक पहुंच रहे हैं। पोटियाकला दुर्ग से संजय कुमार साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू, सीमा साहू का संदेश हम तक पहुंचा है। जिला खरगांव सनौद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बुडाना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी, नंदिनी, रोहित, रितु, मुकेश जगताप का संदेश हम तक पहुंचा है। और ये जो संदेश है ये है बसमत रोड परभणी महाराष्ट्र से रणजीत कारेगांवकर, कंचन कारेगांवकर, सृष्टि कारेगांवकर, समरजीत कारेगांव का। और किसी भी गीत पर अपना नाम शामिल करने के लिए लिख रहे हैं ग्राम बाघामुंडा कोमा खान छत्तीसगढ़ से प्रज्ञानंद देवांगन, नंदिनी देवांगन, प्रकाश देवांगन, गायत्री, यशवर्धन और यशस्वी देवांगन। ये अगला संदेश है स्टेट बैंक ईश्वर कॉलोनी नंगली डेरी नजफगढ़ से लिखने वाली मैथिली कुमारी, लड्डू कुमारी और टुक टुक। अगला संदेश शामिल करते हैं फरुखाबाद से साहबगंज चौराहा यूपी से सुरेश चौरसिया, श्रीमती सरोज चौरसिया, सुबोध चौरसिया, सलोनी चौरसिया, संजू लल्ला चौरसिया, बाबू शिवा चौरसिया और शिवानी चौरसिया का ये संदेश है। इसके बाद हमें अनारकली बाजार जगराव से पंजाब से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीप कमल होत्रा और गविया अमल होत्रा, जयपाल यादव का भी संदेश हम तक पहुंचा है। ये संदेश है भोपालगढ़ राजस्थान से लिखने वाले धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा, पूजा परिहार लिखते हैं मैसेज जरूर शामिल करें। तो देखिए हमने आपका ये संदेश शामिल कर लिया है। अगला संदेश हम तक पहुंचा है बड़ा बम खंडवा चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मारकंडे, संजय मारकंडे और बेबी किट्टू हैं। सुनना चाहते हैं फिर सूरज का गीत हम जरूर सुनाएंगे। इस गीत के बाद अगला गीत आपका ही पसंद का होगा। और फिल्म धनवान का गीत सुनना चाहते हैं उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज कोरवाल, कमला रानी, गीतिका कोरवाल, भानु प्रकाश। लेकिन हम शामिल कर रहे हैं अगला जो संदेश है ये लिखने वाले हैं प्रेम पूर्वक आदाब, आपको भी आदाब, कुमार हेड़ा सहारनपुर से, सैयद मसरूर, शाइनिया हसन, नाजिया। और ये संदेश हम तक पहुंचा है जिला मुरादाबाद दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से लिखने वाले मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, कादर, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह। और नवीन भाटिया जी मोतीनगर दिल्ली से नमस्कार भेज रहे हैं। नमस्कार नवीन जी, कैसे हैं आप? जरूर अच्छे होंगे। अब हम अगले गीत की तरफ बढ़ते हैं जिसे हमने लिया है फिल्म फकीरा से। लता मंगेशकर, किशोर कुमार की आवाजें हैं और ये जो पसंद है कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा और सीटी दीवाना की। तो चलिए इन्हीं की पसंद में हम सभी अपनी पसंद को शामिल करते हैं।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: मम्मी मैं खेलने जा रहा हूँ, जल्दी वापस आ जाऊँगा।
3: ध्यान रखना बेटा।
4: हर माता पिता की यही ख्वाहिश होती है कि उनका बच्चा हमेशा सुरक्षित रहे, लेकिन आज बच्चों के आसपास कई खतरे मौजूद हैं। मानव तस्करी, ऑनलाइन गेमिंग स्कैम, ऑनलाइन ग्रूमिंग, शोषण और बच्चों के लापता होने जैसी घटनाएं।
5: बच्चों को अजनबियों से सावधान रहना, ऑनलाइन निजी जानकारी साझा न करना, अपने माता पिता का फोन नंबर याद रखना और किसी भी खतरे की स्थिति में तुरंत मदद मांगना सिखाएं।
4: आपकी एक सीख आपके बच्चे की सुरक्षा बन सकती है।
5: किसी भी आपात स्थिति में तुरंत 112 डायल करें।
4: आपकी जागरूकता हमारी सतर्कता, बच्चों की सुरक्षा।
0: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम चल रहा है दिल का मेल बॉक्स। और दिल के मेल बॉक्स में आप सबके जो संदेश हैं बड़े प्यारे प्यारे से रखे हुए हैं, मैं शामिल कर रही हूँ। ग्राम कुम्हार हेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा नाजिया, आफिया इब्राहिम सदाम का संदेश हम तक पहुँचा है। पद्मा टाकी नेपा नगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विनी शाह, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह भी हमें संदेश भेजते हैं। मजनू कटिला से कमल बलूजा, मधु बलूजा, सागर बलूजा और सतना मध्य प्रदेश से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक का भी संदेश हम तक पहुंचा है। उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, बोधराज खोरवाल, भानु प्रकाश, गीतिका खोरवाल भी हमें संदेश भेज रहे हैं। कृष्ण कुमार गुप्ता और कमला देवी गुप्ता भी हमें सुन रहे हैं, इनका भी संदेश हम तक पहुंचा है। और ये जो संदेश है कि किनका है, ये है वीरमगाम गुजरात से अजीत भावसार, प्रमिला भावसार, भावेश सन्नी भावसार का पहुंचा है हम तक। कमलेश मुकुल सचिन दीपांशु फिल्म सूरज के गीत सुनना चाहते हैं, ये दिल्ली से हैं, तो हम जरूर सुनवाएंगे ये गीत, लेकिन अभी आप थोड़ा सा करें इंतजार। ये संदेश हम तक पहुंचा ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडाले, अर्चना ताई गोंडाले, हीरामन शिंदे जी और प्रणय प्रसिद्धि। ये संदेश है नलेश्वर नगर नरविल महाराज से पीएस नवाकर, निर्मला नवाकर, विशाल नवाकर का। मलकापुर से नारायण इंगले, मंगला इंगले, आशीष मोहेकर का। और अगला संदेश है सुरेश नारंग, आशु नारंग, सोनाली नारंग का, जो हमें सहारनपुर चंद्रनगर से भेजते हैं। फारूक अली का भी संदेश हम तक पहुंचा है। और इनके अलावा कोल्हापुर महाराष्ट्र से तेजस्विनी चौहान, भाई इंदुरकर, बेबी शौर्या, सुरेश, अंकिता, अनिकेत चौहान, किवलेगांव पुणे से अंकिता कामले, सैदापुरकर विजय कामले, सैदापुरकर बेबी शौर्या, सुरेश कामले। और अगले संदेश की ओर हम बढ़ते हैं। ये अगला संदेश हम तक पहुंचा है, ये किनका संदेश है, चलिए अभी हम पहले ये गीत सुनवा देते हैं, इसके बाद हम अगले गीत की ओर बढ़ते हैं। ये गीत है सूरज फिल्म से, इसकी फरमाइश है बड़ा बम खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मारकंडे और परिवार के सदस्य, और इसी गीत को सुनना चाहते हैं कमलेश मुकुल सचिन और दीपांशु।

अब मैं आपके अगले संदेशों की ओर बढ़ती हूँ। बबलू कश्यप, सिराज मिथुन, अशरफ अली, नवाब अहमद, सलीम अख्तर का ये संदेश हम तक पहुंचा है। मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अबान और समस्त अब्बासी परिवार ऊपर कोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से ये हमें संदेश भेजते हैं। अगला संदेश है सुशीला देवी मधुरकर, सदानंद मधुरकर, कुमार गौरव मधुरकर का, डाबकी चौक अकोला से। और ये संदेश हमें भेज रहे हैं दिलावर खान, हसीना बानो, इलजा नायब और लड्डू, रघुवीर नगर दिल्ली से। अगला संदेश हमें भेज रहे हैं, ये फिर से आप दो दो बार संदेश भेजते हैं तो जिसमें कहीं मुश्किल होती है हमें पढ़ने में, चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा, विमला अनेजा का भी संदेश हम तक पहुंचा है। और ये संदेश है शेरवानी स्कूल कंजरून द्वारा उत्तर प्रदेश से आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी, आलिया अंसारी का। और ये संदेश हमें भेजा है भारत भूषण अंजू श्रीवास्तव, दिव्यंद भूषण, संस्कृति पौरुष का, व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से। अगला संदेश के लिए हम बढ़ते हैं तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा पंचकुला चंडीगढ़ से, राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशव खुराना का। और साथ में है तुलसी मस्किन, शाहदरा से हमें ये संदेश पहुंचा है। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मेहंदी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा और इनके परिवार के सभी सदस्य ये संदेश भेजते हैं। मुल्लापुर दाखा से राजेश जैन, बिट्टू जैन, संजीव जैन, घोटना जैन का भी संदेश हम तक पहुंचाया है। शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी, आलिया अंसारी का ये संदेश हम तक पहुंचा है। और ये है विजय सुरलकर, रतन माला सुरलकर, कुमकुम गुड़िया, मोताला महाराज से हमें ये संदेश भेजते हैं। श्री सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, कुमार संचित, वायाल कुमार, प्रतिमेश कुमारी, प्रणाली देशमुख, कुमारी सर्व देशमुख, कुमारी सानवी देशमुख और कल्पना देशमुख का। अब हम अगला गीत आपके लिए जो लेकर आए हैं वो है आया सावन झूम के फिल्म का। ये फरमाइश आप सबकी है, गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार, रामदेवरा से दिनेश चौहान की पसंद का ये।

जल्दी से हम आपके संदेशों को शामिल कर लेते हैं, नहीं तो आपको शिकायत रहेगी। तो ये संदेश हम तक पहुंचा है जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल का। किसी की भी गीत में ये नाम शामिल करने के लिए कह रहे हैं। उत्तम नगर दिल्ली से ये संदेश आया है और ये संदेश है जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पल डिकेस्ट्रो, विलिस डिकेस्ट्रो का, जनकपुरी सहारनपुर से। ये संदेश है राम राम कुसुम जी लिख रहे हैं, उग्रसेन यादव और शकुंतला यादव गरिमा नई दिल्ली से। अगले संदेश हम शामिल करते हैं संदीप मकर का, ज्योति मकर है साथ में, मन्नत मकर, भारत मकर और साथ में परिवार के सदस्य हैं, ये भी सूरज फिल्म का गीत सुनना चाहते हैं, तो वो हम सुनवा चुके हैं। और शेगांव बुढलाडा महाराष्ट्र से ये संदेश आया है संतोष काले, तेजस काले, लोकेश काले का। और हमारे पास ये भी एक संदेश है अनिल मोहन, उषा मोहन, टीलू नायक, मधु नायक का, पहाड़गंज मुल्तानी ढाडा से। मिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया, मयंक भाटिया का भी संदेश हम तक पहुंचा। गाजियाबाद से ब्रजेश कुमार, अजय कुमार, विजय कुमार, मोनू सोनू सुनना चाहते हैं फिल्म सौतन का ये गीत।

0: प्रीति गीत के साथ ही दिल का मेल बॉक्स यहीं तक, लेकिन आप जुड़े रहिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस चैनल पर कुछ ही पलों में आपके लिए समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पूरी कर आज नई दिल्ली लौट आए हैं। 3 देशों की यात्रा के पहले चरण में उन्होंने 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया का दौरा किया। इस दौरान श्री मोदी ने राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और दोनों देशों के बीच साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे, जहां उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ 3रे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के मंच को भी संबोधित किया और दोनों देशों के प्रमुख उद्योगपतियों से बातचीत की। यात्रा के 3रे और अंतिम चरण में प्रधानमंत्री ने 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड के ऑकलैंड का दौरा किया। वहां उन्होंने प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये 40 वर्षों में न्यूजीलैंड की पहली यात्रा थी। श्री मोदी ने ऑकलैंड में सामुदायिक कार्यक्रम में भारतीय मूल के 10,000 से अधिक लोगों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री लक्सन ने भारत को विश्वसनीय मित्र बताते हुए न्यूजीलैंड की प्रगति में भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना की। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। गुजरात में गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की जन केंद्रित विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। गृहमंत्री कार्यक्रम के दौरान अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र गांधीनगर में पौधारोपण अभियान में भी शामिल हुए। वहीं उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार व्यापक पौधारोपण अभियान के अंतर्गत आज 35 करोड़ पौधे लगाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। मध्य प्रदेश में आज मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 38वीं मासिक किस्त जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव अप्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 1,25,00,000 से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपये से अधिक की राशि अंतरित करेंगे। एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित प्रस्तावित विधेयकों की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति ने गोवा में 2 दिन की चर्चा पूरी कर ली है। इस दौरान समिति ने राज्य सरकार, राजनीतिक दलों, विधायकों, संविधान विशेषज्ञों, सरकारी उपक्रमों, सामाजिक प्रतिनिधियों और मीडिया के साथ बातचीत की। खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने उपभोक्ता शिकायतों के बाद स्विगी इंस्टामार्ट को 9 नोटिस जारी किए हैं। ये नोटिस खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत नियमों के कथित उल्लंघन के मामले में जारी किए गए हैं। प्राधिकरण ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि स्विगी इंस्टामार्ट को विस्तृत स्पष्टीकरण और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। ऐसा न करने पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उपभोक्ता शिकायतों में निर्धारित अवधि समाप्त होने वाले खराब, सड़े गले, दूषित और अन्य असुरक्षित खाद्य उत्पादों की आपूर्ति के आरोप लगाए गए हैं। वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हुन ने फूकोक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। इस हादसे में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई थी। ये हादसा 36 लोगों को लेकर जा रही स्पीड बोट फूकोक द्वीप के पास अचानक ऊंची लहर की चपेट में आकर पलटने से हुआ। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने मृतकों की सूची जारी की है। इनमें से 10 लोग तमिलनाडु से, 3 आंध्र प्रदेश और 2 केरल के रहने वाले थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। फीफा विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। कल क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना ने स्विट्जरलैंड को 3-1 से हराया और अर्जेंटीना सेमीफाइनल में पहुंच गया है। वहीं एक और क्वार्टर फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड ने नॉर्वे को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इंग्लैंड 3री बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। स्पेन और फ्रांस पहले ही सेमीफाइनल में अपनी जगह बना चुके हैं। मौसम विभाग ने देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में अगले चार दिनों तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इनमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगा के मैदान, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और ओडिशा शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Naresh Mago. Prime Minister Narendra Modi has returned to New Delhi after concluding his six-day successful visit to Indonesia, Australia and New Zealand. In the first leg of his three-nation tour, Mr. Modi had visited Indonesia from the 6th to the 8th of this month at the invitation of President Prabowo Subianto. During the visit, the Prime Minister held bilateral discussions with the Indonesian President and reviewed the progress made in the partnership. In the second leg of his tour, Prime Minister Modi travelled to Melbourne, Australia. Mr. Modi participated in the third India-Australia annual summit with Australian Prime Minister Anthony Albanese. During his visit, Prime Minister Modi also participated in the India-Australia CEOs Forum, where he addressed a gathering of top business leaders from both the countries. On the third and last leg of his three-nation visit, the Prime Minister visited Auckland from 10th to 11th July at the invitation of New Zealand Prime Minister Christopher Luxon. The visit to New Zealand was the first visit by an Indian Prime Minister in 40 years. A major highlight of the visit was the community event at Auckland's Spark Arena, attended by over 10,000 members of the Indian diaspora. Addressing the gathering, Mr. Modi stated that the future of India and New Zealand is intertwined and the bilateral trade agreement will accelerate India's journey towards a developed nation.
3: Bharat aur New Zealand ke rishte mein yaadein bhi hain, dosti bhi hain, values bhi hain aur ek commitment bhi hai. Bharat New Zealand ki yahi vaaka ek nayi yatra par nikalne ke liye taiyar hai. हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, हवाएं हमारे साथ है, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है, पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूं हम सफल होंगे।
2: Union Home Minister Amit Shah will inaugurate and lay the foundation stone of various people-centric projects of Ahmedabad Municipal Corporation worth 405 crore rupees in Ahmedabad today. During the program, the minister will also kick-start an ambitious mass afforestation campaign for his Gandhinagar Lok Sabha constituency. Food Safety and Standards Authority of India, FSSAI, has issued 9 notices to food business operator Swiggy Instamart following multiple consumer complaints alleging violations under the Food Safety and Standards Act 2006. In a social media post, FSSAI said the food business operator has been directed to submit a detailed explanation and compliance report, failing which appropriate legal action will be initiated. Consumer complaints alleged the supply of expired, spoiled, rotten, contaminated and otherwise unsafe food products through Swiggy Instamart. The United States launched a new round of strikes against Iran after Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC forces attacked a Cyprus-flagged container ship transiting the Strait of Hormuz. U.S. military said the strikes were carried out at the direction of President Donald Trump. U.S. CENTCOM said the attack on the commercial vessel left a civilian crew member missing and the vessel is unable to continue the journey due to an onboard fire and significant engine room damage. Explosions were heard in Keshem Island, Mandar Abbas and Sirik following the attacks. Meanwhile, Iran has closed the Strait of Hormuz until further notice. Iran's IRGC Navy said the sea route was closed following an incident involving a vessel that attempted to use an unauthorized route. The India Meteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall across northern and eastern parts of the country for the next 4 days. These places include Jammu and Kashmir and Ladakh, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Punjab, Chandigarh, Haryana, Delhi, East Uttar Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, Gangetic West Bengal, Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura and Odisha. In the FIFA World Cup, Argentina and England have advanced to the semifinals. Earlier, England beat Norway 2-1 in a quarterfinal match at Miami Stadium, Florida.

0: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का चैनल गोल्ड और आप हमें सुन सकते हैं एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। दोस्तों ये कार्यक्रम है आज के मेहमान। मैं हूँ आपके साथ रश्मि कुकरेती, स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। आज की मेहमान में आज हमारे साथ है बहुमुखी प्रतिभा की धनी एक ऐसी शख्सियत जो कि वरिष्ठ पत्रकार है, साहित्यकार है, वो है जयंती रंगनाथन, जो लंबे समय से पत्रकारिता करती रही है और साथ ही साथ लिखती रही है कहानियां, उपन्यास, कविताएं। ये सारी जो उनकी रचनाएं हैं उनके पाठकों में बहुत लोकप्रिय रही और वो हम कहें अगर कि वो अनुभव का तो एक खजाना है उनके पास, तो गलत नहीं होगा। तो आज की जो ये मुलाकात है बहुत मजेदार रहेगी और हम ढेर सारी बातें करेंगे जयंती रंगनाथन से। तो आपका बहुत बहुत स्वागत जयंती जी गोल्ड के स्टूडियो में।
1: बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, क्या कहूँ, सब सुनने वालों को ढेर सारा प्यार।
0: वाह जयंती जी, मैं आपको सबसे पहले लेकर जाऊंगी यादों के गलियारों में और मुंबई शहर में जहां से आपने करियर की शुरुआत की, उसके बारे में कुछ बताइए।
1: बिल्कुल, पर मुंबई से पहले मैं आपको भिलाई ले जाना चाहूंगी।
0: हाँ,
1: ये छत्तीसगढ़ में एक बहुत खूबसूरत सा शहर है जहाँ मेरी पैदाइश हुई, जहाँ मैं पली बड़ी। भिलाई स्टील प्लांट में मेरे अप्पा काम करते थे। मैं अप्पा कह रही हूँ तो सब सुनने वालों को पता लग ही गया होगा कि मैं दक्षिण भारती हूँ, अप्पा और अम्मा कहते हैं। बचपन बड़ा खुशहाल सा था, बड़े मजे मजे में हम लोगों की जिंदगी बीती। मैं बहुत छोटी थी तो मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया, तो घर में खुशियां तो थी लेकिन पैसे थोड़े कम थे, तो हमारी माँ ने एक तोड़ निकाला था। मैं आपको ये बात इसलिए बता रही हूँ कि मुंबई और अब दिल्ली के तार वहीं से जुड़े हुए हैं।
0: अच्छा,
1: तो तार ये जुड़ा हुआ है कि बचपन में जब सब घूमने जाते थे गर्मी की छुट्टियों में, हम जा नहीं पाते थे चारों भाई बहन, तो हमारी अम्मा कहती थी कि इसको इस तरह से मनाओ घर में रहते हुए कि तुम्हें लगे कि ये तुम लोगों की सबसे मजेदार छुट्टियां हैं। तो वो क्या करती थी, हम सबको कहती थी कि तुम लोग कुछ कलर पेंसिल ले आओ, कागज ले आओ, जिसको जो मन है करो। मुझे याद है मैं छठवीं में थी और उस साल हमारी अम्मा ने हम लोगों को कुछ सफेद कागज लाके दिया और कहा कि चलो तुम लोग बैठ के इस पे लिखो, जो मन की बातें हैं लिखो। तो उससे पहले मैं बता दूं कि हमारे घर में पढ़ने का मतलब एक तरह से कहूं कि भयंकर सा रिवाज है। घर में और कोई काम हो न हो लेकिन पढ़ने में तो इतने उस्ताद रहे हैं हमारे अम्मा अप्पा और घर के हर सदस्य कि हम सबको एक बीमारी की तरह आदत लग गई है। बिल्कुल,
0: और किताबें तो अपनी यात्रा खुद ही करवाती
1: है। बिल्कुल, और घर में हिंदी की, अंग्रेजी की, तमिल की, मलयालम की, हर भाषा की पत्रिका, उपन्यास, सब कुछ अम्मा अप्पा मंगवाते थे तो हम लोग सब पढ़ते थे। कहीं कोई हम लोगों को रोक टोक ही नहीं था पढ़ने में, बच्चों की सारी पत्रिकाएं आती थी उस वक्त। और प्लस गर्मी की छुट्टियों में जो लाइब्रेरीज होती थी किताबों की, वहां की सदस्यता लेके दे दी जाती थी कि आप लोग पढ़िए, हिंदी पढ़िए, इंग्लिश पढ़िए, भाषा इंप्रूव करिए, फिर खूब चर्चा करिए आपस में। तो हम सब जो है बहुत कल्पनाओं की दुनिया में रहते थे। और अभी जैसे पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मुझे लगता है कि अच्छा खासा जो है एक दौलत थी हमारे पास।
0: मुझे तो यही लग रहा है आपके पास तो बहुत बड़ा धन था।
1: जी जी जी, और इतना पढ़ते थे। तो उस गर्मी की छुट्टी में जब माँ ने कहा कि कुछ लिखो तो मैंने एक कहानी लिख दी। मेरी पहली कहानी थी 6 महीने की चाबी, वो हमारे अप्पा ने किस्सा सुनाया था। तो अप्पा जो है व्हीलचेयर में रहते थे उन दिनों, तो किस्सा सुन के उन्होंने कहा बेटा लिखो तुम ये जयंती। मैं तीसरी घर की उनकी बेटी थी तो मैंने लिख के जब सुनाया शाम को तो अप्पा को बहुत अच्छा लगा, तो उनकी शाबाशी मिली। मैंने कहा चलो और लिखते हैं कहानी। तो इस तरह से मैं कहूंगी 10-11 साल की उम्र से मैंने कहानी लिखना शुरू किया। और अगले साल गर्मी की छुट्टियों में मैंने एक कहानी लिखी धांसू के आंसू। तो एक कॉमेडी कहानी थी, कुछ मजेदार किरदार जो है,
0: शीर्षक सही लग रहा है।
1: तो उसके बाद अप्पा ने कहा ये कहानी बहुत मजेदार है, इसे तुम बिल्कुल रफ करके लोटपोट में भेजो। और मैं आपको क्या कहूं, वो कहानी लोटपोट में छप गई और 40 रुपए का मनी ऑर्डर आ गया।
0: वाह,
1: उससे पहले तक तो पता ही नहीं था कि ऐसा भी होता है। और मैं आपको बता रही हूँ साल 78 या 79 की बात है। बिल्कुल,
0: और आप 10-11 साल की,
1: बिल्कुल उतनी उम्र थी मेरी। और वो ऐसा था कि मेरे हाथ में जैसे एक तुरप का पत्ता लग गया, कोई खजाना लग गया कि लिखो और इससे पैसा भी कमा सकते हैं। क्योंकि पैसे की सच में कमी थी घर में, मतलब आपको कोई भी एक्स्ट्रा चीज अगर कुछ चाहिए तो उसके लिए पैसा तो चाहिए ही था, तो वो एक जरिया बन गया। लेकिन मन के किसी कोने में ये बात नहीं आई थी रश्मि जी कि लिखना आपका करियर बन सकता है, आपका पेशा बन सकता है, पता ही नहीं था उस
0: मतलब
1: छोटे शहर
0: में। था बस एक,
1: तो मैं तो भाई कॉमर्स की छात्रा थी और ये था कि भाई कॉमर्स पढ़ के आप बैंक में नौकरी करेंगे और आपकी एक स्थायी नौकरी होगी, लिखेंगे शौकिया। तो जब मैंने बीकॉम कर लिया तो हमारी माँ ने तय किया, तब तक अप्पा का निधन हो चुका था, कि हम सब मुंबई जाएंगे क्योंकि मुंबई में दीदी की नौकरी लग गई थी।
0: अच्छा।
1: तो हम मुंबई गए और मैंने एमकॉम करना शुरू किया और उसके बाद बैंक में नौकरी मिल गई।
0: ये तो मतलब आप पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी रही होंगी उस समय, बैंक के लिए भी बहुत एक
1: लक्ष्मी जी कॉम्पिटिशन होता था। ज्यादा मैं कहूंगी कि हम लोगों को पता था कि निशाना कहाँ मारना है। वो हमारी माँ जो है, हम तीन बहनें और एक भाई, भाई छोटा, इस तरह तैयार किया था कि बचपन से वो हमें ये कहती थी कि तुम्हें जिंदगी में जो भी सपने पूरे करने हैं कोई ऊपर से राजकुमार उतर के पूरा नहीं करेगा,
0: अपने आप करना है
1: आपको। आपको जो भी मन है, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, आपको जो भी संसार चाहिए वो आपको खुद जुटाना होगा और आपकी कमाई ही आपकी दौलत है। तो उन्होंने उस तरह से हमें ट्रेन किया, तो वो बात दिमाग में इतनी ज्यादा घर कर गई। तो हम तीनों के सामने यही था कि जल्द से जल्द नौकरी करनी है, घर को सपोर्ट करना और अपने लिए एक जिंदगी बनानी है।
0: देखिए माँ जब इस प्रकार से शिक्षा के हथियार आपके हाथों में दे देती है ना, तो हम लोग महिला सशक्तिकरण की बातें तो करते हैं लेकिन इस प्रकार के जब आपकी शिक्षा हो तो फिर तो क्या मतलब, मुझे नहीं लगता किसी और भी मदद की भी जरूरत है।
1: बिल्कुल आप बहुत सही कह रही हैं। इसलिए जब भी मैं लड़कियों से मिलती हूँ, जब भी मैं इस तरह के किसी शिविर में जाती हूँ या लड़कियों को संबोधित करती हूँ, मैं कहती हूँ कि तुम्हारे लिए सबसे जरूरी है आज की तारीख में पढ़ना और आत्मनिर्भर होना। आत्मनिर्भर लड़कियां जो है वो बहुत सुंदर संसार बनाती अपने लिए, अपने बच्चों के लिए और पति के लिए। और यहां मैं ये भी कहना चाहूंगी, जो आज से 30-40 साल पहले अम्मा ने कहा, हमारी अम्मा बड़ा अंग्रेजी में डायलॉग मारती थी कि मैरिज इज नॉट बी ऑल एंड एंड ऑल ऑफ द लाइफ। वो कहती थी राह चलते कोई मिल जाए तो ठीक है, लेकिन आप अपनी शर्तों पर अपनी जिंदगी जिए, कॉम्प्रोमाइज करके, समझौता करके मत जिए। फिर वो भी कहती थी कि अगर आपको लग रहा है कि बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप हो रहा है तो उसमें फिर रहे मत, आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप हैं। तो इस तरह की शिक्षा को लेके हम बहनें बड़ी हुई बिल्कुल। और वाकई में अम्मा की शुक्रगुजार हूँ कि जब बैंक की नौकरी मिलने के बाद मैंने एक बार एक अखबार में एड देखा और वहां ये था कि टाइम्स ऑफ इंडिया को पत्रकार चाहिए, तो मैंने कहा अम्मा मैं इसमें जाना चाहती हूँ क्योंकि ये लोग जो जो मांग रहे हैं वो मेरे पास है। उन्होंने कहा है कि लिखने का अनुभव होना चाहिए, देखिए इतनी मेरी कहानियां और इतने लेख छपे। मैं लिखा करती थी कॉलेज के दिनों में और उसमें बहुत कहानियां छपी थी, पराग वराग सब में छपती थी, तो मुझे लगता है कि एक बार मुझे ट्राई करना चाहिए। अम्मा ने कहा ठीक है जो मर्जी है कर ले। मैंने जो है वो फॉर्म भर दिया और मेरा जो है सिलेक्शन हो गया। रश्मि जी मैं सिर्फ 20 साल की थी जब मैंने धर्मेंद्र ज्वाइन किया, और उस वक्त मुझे इस बात का एहसास नहीं था कि मेरे हाथ में क्या कारू का खजाना लग गया है।
0: जी धर्मयुग ऐसी पत्रिका जो हम याद करते हैं, वो सुनहरा समय, वो साहित्य का मैं कहूँ जमावड़ा जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल जो कुछ बेहतर होना चाहिए वो सब कुछ था धर्मयुग में। इतनी सुंदर सुंदर कहानियां, मैंने बचपन में बहुत धर्मयुग पढ़ा है।
1: कहानियों के अलावा जिस किस्म के लेख, साहित्यिक सांस्कृतिक पत्रिका आप कह रही है और मैंने जिया है,
0: मुझे लगता है एक जो साहित्य की जो संस्थान होता है ना अपने आप में वो था धर्मयुग। और आप बड़ी किस्मत वाली थी कि आपने वहीं से शुरुआत की।
1: पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं सच में बहुत किस्मत वाली थी कि मुझे धर्मवीर भारती जी के साथ काम करने का मौका मिला। 3 साल वो मेरे संपादक, उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया था। तो फाइनल इंटरव्यू में जो है उन्होंने मुझसे पूछा कि ये जो तुम नाम के आगे जयंती रंगनाथन लगाती हो तो सिर्फ ये ऐसी है कि तुम्हें तमिल वमिल बोलना आता भी है? तो मैंने कहा कि सर ना नन्ना वे पेशवें तमिल कलुंगो निकल एन ककड़वो कलुंगो। वो इतने जोर के ठठा के हंसे, बोले वाह लड़की तुम तो बोल लेती हो।
0: मैंने कहा आज का अर्थ क्या था जो अभी आपने बोला? हाँ, ये भी
1: मैंने कहा कि मैं बहुत अच्छे से तमिल बोल लेती हूँ, आपको जो पूछना है पूछिए।
0: वाह क्या बात है, मुझे लगता है कि भारती जी समझ गए होंगे कि क्या कहा है।
1: अच्छा मैं वही कह रही हूँ, उस उम्र के उस पड़ाव में थी जब आपको पता नहीं था कि कितने बड़े लोग हैं क्या है, वो तो आप एक मासूमियत के साथ या एक उस

0: जो प्रशिक्षण मिला वो और मेरा शुद्धिकरण हुआ एक तरह से मैं कहूंगी, भाषा को लेके, समझ को लेके, साहित्य को लेके, वो सब वही वो धर्मयुग से बड़ा कोई स्कूल हो ही नहीं सकता।
1: बिल्कुल,
0: वहाँ रोज मतलब आप देखें पद्मा सचदेव जी आती थी, चित्रा जी आती थी और चुपके से मुझसे कहती थी एक लड्डू दे रही हूँ तुझे, दो दे रही हूँ चुपके से खा ले। मैं छोटी सी थी तो कंधे पे हाथ फेरते हुए, हर बड़ा साहित्यकार वहाँ आता था। कई बार फिल्म सितारे भी आ जाते थे जिनका इंटरव्यू हम करते थे, जिन लोगों के साथ हम काम कर रहे होते थे। रश्मि जी वो कितने बड़े कद के थे, वहां जाके समझ में आया।
1: बातें हो रही हैं धर्मयुग की और बातें हो रही हैं मुंबई की और फिल्मी सितारों की भी आपने बात की, और हमारा जो चैनल है गोल्ड इसमें तो हम लगातार गाने भी सुनते हैं, तो इस मौके पे आप बताएं कौन सा एक मीठा सा गीत हमारे सुनने वालों के लिए सुनवाना चाहती हैं।
0: एक गाना मेरे दिमाग में हमेशा हॉन्ट करता है, आवारा ए मेरे दिल जाने कहां है तेरी मंजिल।

0: बहुत मीठा ये गीत आपने चुना और हम वापस आते हैं उसी मुकाम पर जहां हमने बातचीत छोड़ी थी कि आप बहुत सारे साहित्यकारों से मिलती थी और एक बहुत अच्छा सा माहौल था वहां पर। तो उस समय कुछ रोचक घटना, देखिए पत्रकारिता कहूं या लेखन कहूं, उन सबका मेरा बहुत पहला अनुभव था। जब मैंने ज्वाइन किया और मैं कई बार असाइनमेंट के लिए बाहर जाती थी और मैं बहुत दूर रहती थी पनवेल में, मेरा अप एंड डाउन बहुत ज्यादा होता था
1: ट्रेन
0: तो,
1: से
0: ट्रेन नहीं थी डायरेक्ट वहां उन दिनों पनवेल से, तो मैं ट्रक मिला तो ट्रक, बस मिले तो बस, कोई भी गाड़ी मिले मानखुर स्टेशन और फिर वहां से भागती हुई ट्रेन पकड़ के ऑफिस जा रही हूँ और वहां अटेंड कर रही
1: हूँ। और का ऑफिस किधर?
0: बीटी स्टेशन के बिल्कुल सामने था उसे ना, तो ओल्ड लेडी ऑफ बोरी बंदर कहते हैं उसे, बहुत आलीशान और बहुत शानदार ऑफिस, जैसे वहां जाओ तो बड़ी गर्व की अनुभूति।

0: होती थी कि आप धर्मयुग में काम करने जा रहे हो। तो एक बहुत मजेदार मैं वाकया आपको सुनाना चाहूंगी। इस वाकये का जो संबंध है, आज जितनी भी लड़कियां काम करने आ रही हैं वो भी एक तरह से इससे लेसन ले सकती हैं। तो क्या होता था, हम लोगों का टाइम जो था वो 9:30 से 5 बजे तक का था, और मैं दूर रहती थी तो मुझे भाग के जाना पड़ता था बिल्कुल, ताकि घर में 8:30-9 तक पहुंच जाऊं। तो हमारे जो एक सीनियर थे सुदीप जी, बहुत सम्मान के साथ उनका नाम ले रही हूं, अब वो जो है नहीं, तो वो बहुत मस्तमौला पत्रकार थे, बहुत अच्छा जो है ट्रांसलेशन करते थे, सारा काम बहुत अच्छा करते थे। तो उनके साथ जो है मुझे कहा गया था कि आप उनके साथ काम करिए। तो रोज मैं 4 बजे उनके पास पेज लेके जाती थी कि सुदीप जी, वहां सर बोलने का रिवाज नहीं था, आप जो है पेज जरा देख लीजिए। तो वो पेज यूं उठा के फेंक देते थे, कहते थे कि तुम जो है सिर्फ 4 शीर्षक बना के लाइयो, 25 शीर्षक बना के लाओ, 25 शीर्षक से कम बात नहीं बनेगी, और एंट्रो भी 10 होनी चाहिए इसके, बना के आप लेके गए। और उसके बाद वो रखे रहते थे, बात करते रहते थे। और 5 बजे जब मैं जाती थी उनके पास तो कहते थे नहीं नहीं नहीं, मुझे मजा नहीं आ रहा, बिना देखे यूं कट लगा देते थे, कहते थे चलो और 25 बना के लाओ।
1: अच्छा,
0: तो ये जब लगातार होने लगा तो मैं जो है थोड़ी घबरा गई, मुझे लगा कि मैं कैसे कर पाऊंगी भाई। और फिर उसके बाद मैं अगर 8 बजे निकल रही हूँ तो उसका मतलब है 11 बजे घर पहुंच रही हूँ, मुझसे सवाल नहीं रहा था
1: निकलना है।
0: और सच कहूँ तो पहली नौकरी थी, आदत नहीं थी, समझ नहीं आ रहा था कैसे क्या करूँ। तो ये जब बहुत दिन तक ये चला और मैं मैनेज नहीं कर पाई तो मैं भारती जी के कमरे में चली गई। अच्छा। तो मैंने कहा भारती जी आप मुझे ना यहाँ से ट्रांसफर कर दीजिए कहीं और। तो बोले अरे क्या हो गया, तुम तो अच्छा काम कर रही हो। तो मैंने कहा नहीं नहीं मैं कर नहीं पाऊंगी। कहते कहते आंखों में आंसू आ गए, वो मुझे लगता है पहली बार और आखिरी बार मैं नौकरी में रोई होंगी। और इतने बड़े जो है बैठे हुए साहित्यकार मेरे बॉस, उनके सामने रोते हुए मैंने कहा कि ऐसे ऐसे है, और सुदीप जी जो है वो 4 बजे से मैं बैठी रहती हूँ, ऐसे ऐसे करते हैं और मैं काम नहीं कर पा रही हूँ, मैं कैसे करूँ बताइए। वो खूब हंसे, फिर हंसे। और फिर उसके बाद हमारी एक और सीनियर थी वहाँ सुदर्शना जी, उनको बुलाया, उनको बुला के कहा कि देखिए सुदीप जो है बिल्कुल
1: सुदर्शना द्विवेदी
0: बिल्कुल। तो उनको बुला के कहा कि देखिए सुदीप जी बिल्कुल लौंडो लपाड़ों की तरह ले रहा है बच्ची से काम, बस आप जो है अब इसको अपने इसमें ले लीजिए, आप इसके साथ रहिए ठीक है। फिर बोले तुमको कहीं जाने वाने की जरूरत नहीं है, ये तो मजाक कर रहा है, ये तो सिखाने का उसकी अदा है। तो सुदीप की बाद में जो है सुदीप जी निकले, बोले अरे भारती जी से डांट खिलवा दिया पर आप तो ऐसे ही करते हैं ना, मैं रोते रोते मैं चलो कॉफी पिलाता हूँ। तो मैं फिर कॉफी पिलाते, बोले अरे लड़की झल्ली झल्ली कहते थे तुम तो बहुत अच्छा काम करती हो, मैं तो ऐसे ही कहता हूँ भाई पत्रकार है, पत्रकारों के लिए समय थोड़ी होता है, तुम ऐसे भागती रहोगी तो कैसे सीखोगी पत्रकारिता, हम लोग ऐसे नहीं मतलब डेस्क पे पत्रकारिता नहीं होती, तुम्हें बाहर निकलना चाहिए, बाहर निकल के काम करना चाहिए, और जितना मैं कहता हूँ तुमसे उतना करोगी तो कल तुम्हें बहुत फायदा होगा उससे। पत्थर की लकीर की तरह मैंने उनकी बात मान ली। उसके बाद मेरा उनसे बहुत अच्छा रिश्ता हो गया, एकदम उन्होंने बहुत गुरु की तरह सब कुछ सिखाया। मैं मानती हूँ कि ये एक शुरू में ही आपको एक छोटा सा
1: रास्ता है,
0: तराशना चाहिए, शपथ लगनी चाहिए आपको कि काम ऐसे होता है, पत्रकारिता जो है 9 से 5 की नौकरी नहीं होती। तो हर लड़की जो आज इस फील्ड में आती है तो मैं उनसे यही कहती हूँ कि पत्रकारिता 9 से 5 की नौकरी नहीं होती, कोई भी क्रिएटिव काम आप समय के इसमें बंद के आप नहीं कर सकते,
1: नहीं कर सकते,
0: आपको जो है अपने आप को फैलाना होगा, बाहर जाना होगा, मिलना होगा। जब तक आप दुनिया नहीं जानेंगे आप दुनिया को सच्चाई कैसे बताएंगे
1: जी, लिखोगे कैसे, कागज पर कैसे उतारोगे,
0: बिल्कुल चाहे कहानी हो या आपका जर्नलिस्टिक कोई भी रिपोर्ट हो आपको मैदान में उतरना होगा,
1: उतरना पड़ेगा।
0: तो वो भी मेरे लिए एक बहुत अच्छा सबक रहा
1: जी,
0: पर शुरू में ही मिल गया मुझे।
1: वाह, तो वो जो मूर्ति जो गढ़ी गई वो बड़ी खूबसूरत और बड़ी मजबूत निखर कर आई। और अब तो आप दिल्ली में है, फिर मुंबई से दिल्ली आना हुआ
0: जी जी। तो फिर मुंबई में मैं धर्मयुग में 10 साल रही, 1 साल ट्रेनिंग के और 9 साल वहां रही। फिर उन दिनों जो है इलेक्ट्रॉनिक चैनल बड़ा बूम कर रहा था तो मुझे भी लगा कि थोड़ा हाथ माजमाना चाहिए, उम्र का तकाजा भी था, तो मैंने सोनी टेलीविजन ज्वाइन कर लिया था 3 साल के लिए बिल्कुल शुरुआती दिनों में। और काफी सीरियल्स लिखे वहां पे मैंने। अच्छा। मैं आइडिएशन डिपार्टमेंट में थी तो वो भी एक बहुत अच्छा अनुभव था।

0: बन जाऊं। हमारे श्रोता आज एक ऐसी शख्सियत के अनुभव सुन रहे हैं जिन्होंने, हम कहेंगे ना कि रचनात्मकता के हर पहलू पर काम किया हुआ है। ये बहुत बड़ा खजाना है, मतलब जो निखर कर आता है ना, वो एक एसेंस निखर कर आता है। और वो आपकी कहानियों में, उपन्यास में जो आप लिखती हैं, उसमें वो पता चलता है। जयंती जी, हम जब पढ़ते हैं तो ना लगता है कि अगला पेज क्या होगा, अगला पेज क्या होगा। वो मैं तो महसूस करती रही हूँ।
1: नहीं नहीं, ये तो अनुभव जो थे वो तो सच में मेरे लिए बहुत, क्या कहूँ, एक तरह से विटामिन का ही काम किया। तो ये जो किस्सा सुना रही हूँ सोनी टेलीविजन का, तो मैं वहां गई और उन्होंने मुझसे कहा कि आपको जो है एक रोमांटिक सीरियल लिखना है। 27 मिनट का सीरियल होता था, उसे मशी मशी जो भी आप बोलिए, रोम कॉम कॉम तो नहीं था, बट बिल्कुल वैसा सीरियल था, रोमांस की कहानी। तो कहानी वहानी पे हमने जो है डिस्कस कर लिया। फिर मुझे जो है शुक्रवार के दिन ऐसी सुबह एक मीटिंग में मुझे वो पूरा उनको सुनाना था। तो वहां एग्जीक्यूटिव एडिटर, डायरेक्टर और बाकी 2-3 लोग आ गए और मुझसे कहा गया कि आप नरेशन दीजिए। और मैं आपको बताऊं तो 3-4 दिन लग के मैंने लालित्य पांडित्य सब कुछ उढ़ेल के मैंने वो एपिसोड लिखा था। कुछ ऐसा लिखा था कि भारती जी सुने तो शाबाशी दें और कहें कि जयंती तुमने क्या लिखा है।
0: वाह,
1: पूरा पांडित्य लाल, मतलब जो कुछ पता था भाषा का पूरा। उसके बाद मैंने पढ़ना शुरू किया। मैं पढ़ू और निर्देशक जो है वो हंसने लगे, मैं उनका चेहरा देखूं, पर उन्होंने मुझे चुप रहने को नहीं कहा। मैं फिर पढ़ रही हूँ, फिर वो हंस रहे हैं। मुझे लगा मैं कहीं जल्दी जल्दी तो नहीं बोल रही, बहुत तेज तो नहीं बोल रही, बहुत गलत तो नहीं बोल रही। फिर आराम आराम से पढ़ना शुरू किया, वो फिर हंस रहा है। वो पूरा आधा घंटा ऐसा ही गुजरा कि मैं पढ़ू और वो हंसे, मैं पढ़ू और वो हंसे। मैंने जब खत्म किया और उनका चेहरा देखा, मैं समझ नहीं पा रही थी क्या हो रहा है मेरे साथ। वो हंस क्यों रहे, मैं कोई कॉमेडी सीरियल तो लिखा नहीं है मैंने, ये तो शुद्ध रोमांटिक है। लड़का लड़की छोटे से कोई शहर में है, कॉलेज के स्टूडेंट है, मिलते हैं। फिर मैं उनका चेहरा जब देखने लगी तो उन्होंने कहा, जयंती तुमने संस्कृत में क्यों लिख दिया? और खूब हंसे। मैं फिर मुंह देख रही हूँ उनकी और हक्का बक्का होके बोले, अरे जैसे बोलती हूँ वैसे लिखो।

0: ना, ये जिस भाषा में तुमने लिखा है उस भाषा में कौन समझ पाएगा? ये हम लोगों की बोलचाल की भाषा थोड़ी है। और तुमने जो हमारे लिए बाकी जो लिख के दिया था वो तो बिल्कुल अच्छा था, बिल्कुल बनेगी इतनी बात का एक एपिसोड। और अब ये जो लिखा है वो तो तुमने ऐसी भाषा में लिखा है जो कोई समझ ही नहीं पाए। उस दिन मुझे जिंदगी का दूसरा एक लेसन मिला कि भाषा वो होनी चाहिए जो दूसरों को समझ में आए, जो संप्रेषणीय हो।
1: जी,
0: अगर आपकी भाषा ऐसी है जो दूसरों की समझ ही ना आए, आपके पाठकों की या देखने वालों की या सुनने वालों की, उस भाषा का कोई मतलब नहीं।
1: खासकर वो जब वो पर्दे पर बोल रहे हैं तो आपकी भाषा वास्तविक भाषा होनी चाहिए, असल भाषा होनी चाहिए।
0: तो मैंने रश्मि जी यहाँ ये किया कि लिखने की भाषा भी ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को समझ आए। देखिए, अब पत्रकारिता शुरू किए हुए भी मुझे कुछ साल हो गए थे, दुनिया तेजी से बदल रही थी और पलट के जब देख रही थी तो हर कोई शिकायत कर रहा था कि हिंदी से लोग दूर भाग रहे हैं, हिंदी से लोग दूर भाग रहे हैं। अब भाषा को अगर हम बहती नदी नहीं बनाएंगे, लोगों से जोड़ेंगे नहीं, तो नई पीढ़ी कैसे जुड़ेगी, बताइए। तो उस दिन मुझे ये दूसरा सबक मिला कि मेरी भाषा ऐसी होनी चाहिए जो दूसरों को समझ में आए, किसी भी उम्र के लोगों को समझ में आना चाहिए, चाहे मैं लेख लिखूं, कहानी लिखूं, उपन्यास लिखूं, लेकिन भाषा मेरी ऐसी हो जो हर किसी की समझ में आए। तो वो मैंने दूसरा लेसन लिया। उसके बाद मुंबई से मैं दिल्ली आई, वनिता पत्रिका की शुरुआत हो रही थी, बतौर संपादक उन्होंने मुझे बुलाया था, तो मैंने सोचा प्रिंट मीडिया जो है वापस आती हूँ। और किसी भी पत्रकार के लिए ना अपनी पत्रिका चलाने का अलग ही एक शौक होता
1: जी,
0: है,
1: जब आप करता धरता बन जी, जी, जी, जी, और वनीता जो मैगजीन वो तो महिलाओं की बहुत प्रिय मैगजीन,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: और जिसमें की कहानियां, कविताएं, मतलब हर वो चीज, हर वो पहलू जो कि महिलाओं के लिए जरूरी होता है, तो वो मैगजीन तो हम समझ सकते हैं कि जब आप वो इतना अनुभव लेकर आई उसने तो हिट होना ही था।
0: वो एक बहुत अच्छा अनुभव रहा। उस वनीता की वजह से मैं दिल्ली भी आ गई और दिल्ली ने मुझे अपना लिया, मैंने दिल्ली को अपना लिया। तो इस तरह से
1: जयंती जी, यहाँ पे एक जो सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, क्योंकि आप उस समय टेलीविजन के लिए, सीरियल्स के लिए लिख रही थी, तो मुंबई की जो फिल्म इंडस्ट्री है या जितने भी ये सीरियल्स बनते हैं, धारावाहिक बनते हैं, ये जो भाषा जो होती है आजकल, बहुत ये बात चल रही है कि रोमन में लिखी जाती है, पढ़ते वही हैं, और आजकल जो बच्चे होते हैं वो भी हम देखते हैं जब टेक्स्टिंग करते हैं, जो संदेश भेजते हैं, तो वो हिंदी भी रोमन में लिख रहे होते हैं। उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगी, वो कितना सही है, कितना हमें ग्राह्य करना चाहिए, नहीं करना चाहिए?
0: देखिए रश्मि, ये बात जो है ये सोचनी तो है, लेकिन इसे आप अब बदल नहीं पाएंगे। मैं इसका कारण आपको बताती हूँ। हिंदी के जितने साहित्यकार हैं या पत्रकार हैं या इवन संपादक रहे या हिंदी के मूर्धन्य लोग, उन सब ने जो है हिंदी को आगे नहीं बढ़ाया इस तरह से कि अपने जो बच्चे थे उन्होंने उन सब बच्चों को अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में डाला। सारे जितने हिंदी पट्टी के लोग हैं उन लोगों को भी यही लगा कि अंग्रेजी जो है वो सफलता का पासपोर्ट है, हिंदी नहीं, हिंदी में आगे पढ़ के आपको नौकरी नहीं मिलेगी, आप सफल नहीं हो पाएंगे। तो उस चक्कर में क्या हुआ, करीब पूरा 5 दशक तक हमने अपने बच्चों को हिंदी से दूर कर दिया। वो बच्चे जो है हिंदी में फेल होते हैं, बाकी सभी जो है उनके
1: बहुत बढ़िया करते हैं जी,
0: हाँ। वो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कहते अच्छा कोई बात नहीं, हिंदी तो है। हमने हिंदी को इस तरह से पूरे पाठ्यक्रम में हाशिए में डाल दिया। गलती तो हमारी है ना। अब आप अपने बच्चों को, जो भी पीढ़ी आ गई है दूसरी तीसरी, उनको आप दोष नहीं दे सकते। वो सबने वही कहा जो उनके माता पिता ने उनके लिए सही समझा। तो आपने जब देवनागरी से उनको दूर कर दिया, हाँ, आपने उनको हिंदी पढ़ने के लिए दिया ही नहीं। मैं जब नंदन की संपादक थी तब हम स्कूल्स में जाते थे कि आप नंदन सब्सक्राइब कर ले। माता पिता कहते थे हमारे बच्चों को हिंदी पढ़ने की जरूरत नहीं है, हिंदी तो घर में बोल ही लेते हैं। अच्छा। बोलने भर को हिंदी चाहिए, उन्हें अंग्रेजी सिखाइए, अंग्रेजी में उनको मतलब फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना आना चाहिए उन्हें। आप अगर ये सब लेके चलेंगे और आज हम यहाँ बैठ के ये कहेंगे कि क्या कहें, हमारे बच्चे तो इंग्लिश में टाइप करते हैं, उनकी गलती नहीं है,
1: तो
0: हमने तैयार किया हुआ है, आपने दूर किया है। प्लस बीच में ये दौर आ गया था कि आपने हिंदी को इतना क्लिष्ट बना दिया कि नई जो भी हिंदी पढ़ना चाहे वो बहुत दूर होते चले गए। क्लिष्ट हिंदी ही सही हिंदी है या नहीं, इस पे भी मैं बहस नहीं करूंगी, क्योंकि हर तरह की हिंदी के पाठक हैं। हिंदी अपने आप में इतनी खूबसूरत भाषा है भाई कि उसको आप कैसे भी लिखे वो पठनी ही होगी, लेकिन अगर आपको नए लोगों को जोड़ना है तो आपको उनको देना होगा कुछ, आपने वो किया ही नहीं
1: जी, बिल्कुल।
0: तो फिर अब आपके इस प्रश्न पे आती हूँ कि पूरे मुंबई के फिल्म इंडस्ट्री में जितने भी सितारे या जितने भी लोग काम करते हैं उन्होंने हिंदी में कभी कोई पढ़ा ही नहीं है, उनको सिर्फ बोलचाल की हिंदी आती है, इसीलिए वो हर काम अपना अंग्रेजी में करते हैं। तो मीटिंग्स भी जो वहाँ होती है तो अंग्रेजी में होती है मीटिंग्स, क्योंकि सारे के सारे वही लोग वहाँ नियम बनाते हैं और फिल्में बनाते हैं जो अंग्रेजी में महारत है जिनको, लेकिन मजबूरी है कि उनको वेब सीरीज हो या फिल्म हो वो हिंदी में बनाना है, क्योंकि हिंदी 70%

0: जो है आज भी हिंदुस्तान में हिंदी ही बोली जाती है, समझी जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा दुष्चक्र है, लेकिन जो हिंदी पट्टी से गए हैं वो हिंदी पढ़ लेते हैं, पर जो महानगरों से या दूसरी पट्टी से गए हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा संकट है कि वो देवनागरी पढ़ ही नहीं पाते। और अगर आप अंग्रेजी में उनको लिख के दें हिंदी में, और वहां पे एक इंस्ट्रक्टर भी होता है जो उनको कहता है ऐसे नहीं ऐसे बोलिए, ऐसे नहीं ऐसे बोलिए, इसमें ये जो एक बहुत क्या कहना चाहिए घटना हो गई है, इसको अब सुधारा नहीं जा सकता।
1: मुझे लगता है कि शायद जो अब इतने सारा सोशल मीडिया आया है जिसमें कि हर कोई हिंदी लिख सकता है, बोल सकता है, कोई रोक टोक नहीं है, और शायद इससे अगर वापस आए कभी, क्योंकि जो आपने जो बात की, वाकई एक पीढ़ी ऐसी तैयार हुई जब वो वहां पहुंची मुंबई में संघर्ष करने के लिए, तो उसके पास जो भाषा थी, जो मीडियम था, वो अंग्रेजी ही था।
0: बिल्कुल।
1: तो वो रोमन में पढ़ने के लिए एक तरह से बाध्य हो गए, तो हम शुक्र ये मनाएं कि कम से कम वो जो एंड प्रोडक्ट निकल कर आ रहा है वो हिंदी है।
0: हिंदी इस तरह से आगे बढ़ेगी। अब हिंदी कैसे आगे बढ़ेगी, तो आपको मैं बताऊं, ऑडियो बुक्स के माध्यम से बनेगी, वीडियो बुक्स के माध्यम से आगे बढ़ेगी, ये जो आप कह रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए। और यहाँ एक अच्छी बात ये हुई है कि पिछले 10 सालों में हिंदी में जितने लेखक आए हैं जिनकी किताबें बहुत बिक रही हैं, वो कोई हिंदी वाला नहीं है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है
1: जी।
0: वो वापस युवा पीढ़ी को हिंदी की तरफ लेके आ रहे हैं। तो आज हम वापस अगर ये कहें, जिस तरह से हम कहते हैं कि फिल्मों का एक अच्छा दौर है, वेब सीरीज का अच्छा दौर है, वैसे मैं कहूंगी लेखन का भी अच्छा दौर है, हिंदी लेखन का
1: जी।
0: क्योंकि अब हर तरह की चीजें लिखी जा रही है, पाठक जहां मने वहां वो पढ़ रहा है। आपको अगर मुफ्त का पढ़ना है तो आप सोशल मीडिया पे पढ़िए, इतनी पत्रिकाएं उपलब्ध है आपको, हाँ, और इतने सारे नॉवेल्स आ रहे हैं। तो मैं तो हमेशा मानती हूँ कि हिंदी के लिए ये सबसे अच्छा वक्त है।

0: आपने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, 16 किताबें लिखी हैं, 6 उपन्यास आप लिख चुकी हैं, और जो अभी आपने बात की बच्चों के लिए ऑडियो बुक्स आप कर चुकी हैं, पॉडकास्ट भी आप करती हैं। ये जो ऑडियो बुक्स और पॉडकास्ट है इस पर आते हैं, ये कैसे मन में आया अचानक कि मैं पॉडकास्ट करूं और ऑडियो बुक्स करूं बच्चों के लिए?
1: बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी। जी देखिए, जब आप पढ़ते हैं और देखते हैं, सबको देखना बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल हाँ,
0: जी,
1: क्योंकि देखना बहुत जल्दी दिमाग में बैठ जाता है। बच्चों को पढ़ने में तकलीफ होती है, इवन बड़े भी, अगर आप कहीं यात्रा कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो ऑडियो बुक्स का ये होता है बिल्कुल, चाहे वो पॉडकास्ट में कोई भी हो सकता है, हेल्थ से संबंधित पॉडकास्ट हो सकता है, कॉमेडी, कहानी, सुनने में आपको कहीं कोई ज्यादा कष्ट उठाना नहीं पड़ता। आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो, गाड़ी में हो, बस में हो, आप आराम से सुन सकते हैं। तो मुझे लगता है पॉडकास्ट और ऑडियो बुक्स का रिवॉल्यूशन करीब 7-8 साल पहले हुआ, और हमारे यहाँ बहुत अच्छे से इनकी एंट्री हुई। तो ये क्या करते हैं, कहानियों को बहुत अच्छी आवाज में रिकॉर्ड करते हैं और आप उन कहानियों को सुनिए। तो अगर बच्चा जो है हिंदी में कमजोर है या पर हिंदी की कहानी सुनना चाहता है, पहले दादी नानी की कहानियां जो है इतनी पॉपुलर थी, तो अब दादी नानी की कहानियां अच्छी आवाज में अगर आपको मिल रहा है, तो ये एक ऐसा एक माध्यम है, मैं अगेन कहूंगी लेखन का, कहूंगी या मीडिया का, जो बहुत लोकप्रिय हो गया, सुनने वाला माध्यम पॉडकास्ट। तो इसीलिए मैंने भी सोचा कि भाई ये इतना अच्छा माध्यम है, इतना ज्यादा लोकप्रिय हो रहा है, तो यहाँ पे भी मुझे आजमाना चाहिए। तो स्टोरी टेल वालों ने मुझसे कहा था बच्चों के लिए कुछ लिखिए, तो वहां मेरे 2-3 सीरीज हैं बच्चों के और कहानियां हैं काफी सारी जो काफी चलती हैं, तो वो बहुत अच्छी पैकेजिंग होती है। मैं और आप बात कर रहे हैं, इसी बातचीत में पीछे से कोई आवाज, कोई गाना आ जाए, जैसे आप बीच बीच में गाना बजा रही हैं, उस तरह से लुत्फ आ जाता है, सुनने का आनंद आ जाता
0: है। बिल्कुल, वो एक जिसे कहते हैं ना श्रव्य, आप एक पूरा इफेक्ट लगा के जो बनाते हैं, पूरा नाटक जैसा माहौल हम लोग बना देते हैं। आकाशवाणी में भी तो यही हम सब करते हैं,
1: आकाशवाणी में तो नाटकों में शुरू से यही करते हैं।

0: जयंती जी, चलते चलते हमारे श्रोताओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगी?
1: अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मेरी किताबें तो हर जगह अवेलेबल है, पर मैं अब उनके लिए कुछ कहना चाहूंगी जो लिखना चाहते हैं। और मेरा मानना है कि आपके अंदर अगर है कि लिखना है तो जरूर लिखिए। अब भी पहले की तरह का माहौल नहीं है कि आपको कहानी किसी संपादक को भेज के महीनों इंतजार करना पड़ेगा स्वीकृति पत्र का। अब आपके पास सोशल मीडिया है और आपके पास कंप्यूटर है, आप जो मन में आए लिखिए और आप उसे सोशल मीडिया के जरिए अपने दोस्तों को और अपने पूरे प्लेटफॉर्म पे डालिए। और ये भी मैं कहना चाहूंगी कि आप ये भी ना सोचें कि आप कैसा लिखते हैं। आप भाषा में अगर आपको शुद्धता चाहिए, अच्छी भाषा चाहिए, तो खूब पढ़िए। आप जितना पढ़ेंगे उतना आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे लिखना है। लेकिन फिर आप अपनी जो एक खासियत है ना भाषा की, उसको भी बचा के रखिए। खूब देसी जो है शब्द डालिए, देसीपन का मजा दीजिए, वहां के किस्से दीजिए बिल्कुल, और आप लगातार लिखिए। जिससे क्या होगा, आपके पाठक बनेंगे और आपको एक बहुत अच्छी जमीन मिल जाएगी। और आज की तारीख में जितने भी पब्लिशर हैं वो सारे के सारे सोशल मीडिया से ही अपने लेखक तलाशते हैं। सोशल मीडिया में अगर आपका लिखा बहुत पढ़ा जाता है, आप कुछ अच्छा लिख रहे हैं, तो वहीं से आपसे संपर्क करेंगे कि हमारे लिए किताब लिख के दीजिए। तो ये जो वक्त है वो सबसे अच्छा वक्त है हिंदी में लिखने का। और ये भी मैं आपको बता दूं कि आप लिखने के साथ साथ अपनी बात को रिकॉर्ड करके, आपके फोन में सारी सुविधाएं हैं नहीं तो गूगल की मदद ले लीजिए, पॉडकास्ट बनाइए, आप रिकॉर्ड करिए, अपने मोबाइल को ऑन करके रिकॉर्ड करिए। और बहुत ऐसे प्लेटफॉर्म है जो मुफ्त में आपका जो है वो पॉडकास्ट रिले करेंगे। और पॉडकास्ट के जरिए क्या होगा, आप ज्यादा और नए और युवा लोगों तक पहुंच पाएंगे। अगर आप लोकप्रिय हो गए, आपको बहुत अच्छे नंबर मिलने लगे, तो आपको पैसे भी मिलने लगेंगे। तो आप जरा भी मत सोचिए कि मेरा लिखा कौन पढ़ेगा। आपका लिखा पढ़ने के लिए पूरी दुनिया इंतजार कर रही है, क्योंकि आप कुछ अलग और अच्छा लिखने वाले हैं। तो तुरंत आप इस पे अमल करिए और किसी का इंतजार मत करिए।
2: दोस्तों सच बताऊं, मेरा तो मन नहीं कर रहा ये मुलाकात समेटने का, लेकिन घड़ी कह रही है कि आपसे विदा लेने का समय हो चुका है। तो जयंती जी, फिर मुलाकात खत्म करते हैं, इजाजत लेते हैं।
1: बहुत बहुत शुक्रिया रश्मि जी, मुझे भी बहुत मजा आया आप लोगों के साथ बात करके और आप लोगों के साथ मिलके। मेरी शुभकामनाएं तहे दिल से मैं चाहती हूँ कि आप सब आगे बढ़े, बहुत खुश रहे, अपने सेहत का भी ख्याल रखें।
2: जी,
1: इसी के साथ कहते हैं नमस्कार।

कसत सागर फ्लिमिलू आशा भोसले तंग एस पी बल्ला सुब्रमण्यम ने सनाजात इलुर सुमकन समीर यांगलो यांग श्रीकन नदीम श्रवण।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पूरी कर आज नई दिल्ली लौट आए। 3 देशों की यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी ने 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया का दौरा किया। इस दौरान श्री मोदी ने राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और दोनों देशों के बीच साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ 3rd भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। यात्रा के 3rd और अंतिम चरण में प्रधानमंत्री ने 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड के ऑकलैंड का दौरा किया। वहां उन्होंने प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि भारत हिंद महासागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक मजबूत और विश्वसनीय शक्ति के रूप में उभरा है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा से भारत के रणनीतिक संबंध और मजबूत हुए हैं।
1: हम एक स्टेबिलाइजिंग फोर्स बनके इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशन में आज उभर पाए हैं, इसी को प्रधानमंत्री एक साथ लेके आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपने परिश्रम से, अपने स्टेट्समैनशिप से अपने पॉलिसी को भारत में लागू करके बाकी देशों को दिखाया और सभी देशों ने एक्सेप्ट किया कि यस, लेट दिस बी द फ्रेमवर्क, लेट इंडिया डिसाइड द फ्रेमवर्क। हम इस फ्रेमवर्क पे एक लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन, आप सोचिए ये कितनी बड़ी जीत है।
0: श्री संबित पात्रा ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने माफी योजना 2026 शुरू की है। इसके तहत आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त छूट के साथ भविष्य निधि ट्रस्ट संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने का एक मुश्त अवसर प्रदान किया गया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि ये योजना 6 महीने की अवधि तक लागू रहेगी। मंत्रालय के अनुसार पात्र प्रतिष्ठानों को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को ईमेल के माध्यम से औपचारिक आवेदन प्रस्तुत करना होगा। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। गुजरात में गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की जन केंद्रित विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। श्री शाह ने अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र गांधीनगर में पौधारोपण अभियान का भी शुभारंभ किया। इधर उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार के व्यापक पौधारोपण अभियान के अंतर्गत आज 35 करोड़ पौधे लगाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। वियतनाम के प्रधानमंत्री ने ले मिन हुन ने फूकोक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। इस हादसे में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। इनमें से 10 लोग तमिलनाडु, 3 आंध्र प्रदेश और 2 केरल के रहने वाले थे। विदेश मंत्रालय ने वर्ष 2017 में जारी यमन यात्रा संबंधी अधिसूचना वापस ले ली है। यह अधिसूचना यमन में गृह युद्ध और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के कारण भारतीय नागरिकों की यात्रा पर प्रतिबंध लगाने के लिए जारी की गई थी। कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने खाड़ी देश को कूटनीति, मीडिया और निवेश के क्षेत्र में प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित किया था। शेख हमद ने क्षेत्रीय परंपरा को तोड़ते हुए 2013 में स्वेच्छा से अपने पुत्र को सत्ता सौंपने से पहले 18 वर्षों तक कतर पर शासन किया। टेनिस में आज विंबलडन के पुरुष सिंगल्स और महिला डबल्स के फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। पुरुष सिंगल्स के फाइनल में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी यानिक सिनर का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 8:30 बजे शुरू होगा। महिला डबल्स के फाइनल में चीन की गुओ हानयू और फ्रांस की क्रिस्टीना म्लादेनोवा की जोड़ी का मुकाबला कनाडा की गैब्रिएला ड्राबोवस्की और ब्राजील की लुइसा स्टेफनी की जोड़ी से होगा। ये मैच शाम 5:30 बजे से खेला जाएगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहला सेमीफाइनल बुधवार को फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। दूसरा सेमीफाइनल गुरुवार को इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Sunil Verma. Prime Minister Narendra Modi has returned to New Delhi after concluding his six-day successful visit to Indonesia, Australia and New Zealand. In the first leg of his three-nation tour, Mr. Modi visited Indonesia from 6th to 8th of this month at the invitation of President Prabowo Subianto. During this visit, the Prime Minister held bilateral discussions with the Indonesian President and reviewed the progress made in the partnership. In the second leg of his tour, the Prime Minister travelled to Melbourne, Australia. Mr. Modi participated in the third India-Australia annual summit with Australian Prime Minister Anthony Albanese. During his visit, Prime Minister Modi also participated in the India-Australia CEOs Forum, where he addressed a gathering of top business leaders from both countries. On the third and last leg of his three-nation visit, the Prime Minister visited Auckland from 10th to 11th of July at the invitation of New Zealand Prime Minister Christopher Luxon. The Employees Provident Fund Organisation, EPFO, has introduced the Amnesty Scheme 2026, providing a one-time opportunity for establishments operating exempted Provident Fund to regularise their status. Labour and Employment Ministry says that the scheme will remain open for a period of 6 months. This scheme applies to establishments that have been operating a Provident Fund Trust recognised under the Income Tax Act 1961. The ministry said eligible establishments shall submit a formal application through email to concerned regional office. An exempted provident fund is an employer-managed PF scheme that handles its own provident fund contributions internally through a private trust rather than depositing them directly into EPFO. In Maharashtra, the death toll in the Moshi waste depot accident in Pune district has risen to 9 after the bodies of 7 more victims were recovered during the fourth day of rescue operations today. One person remains trapped under the garbage mound and search efforts are continuing. The accident occurred on July the 8th when a massive heap of garbage collapsed on the administrative building of the waste-to-energy project at Moshi in Pune district, trapping 23 people. Vietnamese Prime Minister Le Minh Hung has ordered a probe into the speedboat tragedy near Phu Quoc Island that claimed the lives of 15 Indian tourists. According to a statement issued by Consulate General of Vietnam in Mumbai, PM Hung asked authorities to identify shortcomings, determine both direct and indirect causes of the accident, and implement corrective measures to prevent similar incidents in the future. He also directed authorities to take strict legal action against anyone found to have violated regulations that may have caused the accident. Government has debunked a fake approval letter claiming to grant a loan of 5 lakh rupees under the Pradhan Mantri Mudra Yojana on payment of 350 rupees as processing fee. The fact-check unit of the Press Information Bureau, PIB, has termed the letter as fake. PIB clarified that the Micro Units Development and Free Finance Agency, Mudra, does not lend directly to micro entrepreneurs or individuals. India has condemned the attack on the commercial vessel GFS Galaxy off the coast of Oman earlier today. External Affairs Ministry informed in a statement that of the 11 Indian nationals on board, 10 have been rescued so far, while one Indian national is reportedly missing. It said the Indian Embassy in Oman is closely monitoring the situation and proactively coordinating with the Omani authorities in the ongoing search and rescue operation. India has thanked the Omani authorities for their support. In the FIFA World Cup, France and Spain will face off in the first semi-final on Wednesday. The match will kick off at 12:30 a.m. Indian Standard Time. France reached the semi-finals after defeating Morocco 2-0 in the quarter-finals, while Spain advanced with a hard-fought 2-1 victory over Belgium. The second semi-final will be played on Thursday, with England taking on Argentina, also at 12:30 a.m. Indian Standard Time. And that is the end of this news bulletin.
3: मीडियम वेव 284.9 मीटर यानी 1053 किलोहर्ट्ज और FM 101.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फौजी भाइयों के लिए फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम।

जय हिंद फौजी भाइयों, इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे फिल्मी गीत। तो आए कार्यक्रम के शुरुआत में सुनते हैं ये गीत, जिसे हमने लिया है नागार का नागाट का फिल्म से, श्रेया घोषाल और नीरज सीदर की आवाज़ों में। गीतकार है मुदस्सर अजीज़ और संगीतकार है ललित पंडित।

आइए आप सुनते हैं हीरो फिल्म से मोहित चौहान और प्रिया पंचल की आवाज़ों में। गीतकार है निरंजन आयंगर और संगीतकार है सचिन जिकर।

0: अभी आप सुन रहे थे आजा नचले फिल्म से सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में। गीतकार है जयदीप साहनी और संगीतकार है सलीम सुलेमान। ये फिल्म गीत आप आकाशवाणी ले से सुन रहे हैं। अगला गीत हम सुनवाते हैं लव स्टोरी 2050 फिल्म से शान और अलका याग्निक की आवाज़ों में। गीतकार है अनु मलिक और संगीत दिया है जावेद अख्तर।
1: People, please listen to me. This gentleman over here is going to recite some meaningful poetry for us.
2: What?
1: Karan Malhotra from Sydney, age 23, current status single and finally puttering.
2: No, I can't do this. Have you lost your marbles?
3: मौसम अचानक ये बदला है क्यों?
1: Karan, it's really easy.
2: No,
1: come on.
2: I can't. This is so unfair.

लुटेरा फिल्म से मोनाली ठाकुर की आवाज़ में गीतकार है अमिताभ भट्टाचार्य और संगीतकार है अमित त्रिवेदी।

फिल्म गीतों के इस कार्यक्रम में आए आप सुनते हैं कॉलेज कैंपस फिल्म से शान और मजीरा की आवाज़ों में। इस गीत को लिखा गया है अनवर सागर और संगीत से संवारा है अतुल।

आइए आप सुनते हैं कोई मिल गया फिल्म से उदित नारायण और चित्रा की आवाज़ों में। गीतकार है इब्राहिम आशिक और संगीतकार है राजेश रोशन।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। भारत ने ओमान के साहिल के नज़दीक कमर्शियल बहरी जहाज GFS गैलेक्सी पर हमले की मजम्मत की है। 10 भारतीय अफराद को बचा लिया गया है जबकि एक लापता है। भारत ने खित्ते में कमर्शियल बहरी जहाज़ों पर बार बार हमले होने पर तश्वीश का इजहार किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अपने दौरे में कई समझौते तय करने के बाद नई दिल्ली वापस आ गए हैं। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने अहमदाबाद में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। मुलाजमीन की प्रोविडेंट फंड तंजीम EPFO ने प्राइवेट प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट चलाने वाले इदारों के लिए 6 महीने की आम रियायत की स्कीम शुरू की है ताकि उनके दर्जे को बाजाब्ता शक्ल दी जा सके। विंबलडन टेनिस में आज शाम मर्दों के सिंगल्स फाइनल में यानिक सिनर का मुकाबला अलेक्जेंडर ज़वेरेव से होगा और फीफा वर्ल्ड कप में इंग्लैंड और अर्जेंटीना सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। भारत ने ओमान के साहिल के नज़दीक कमर्शियल बहरी जहाज GFS गैलेक्सी पर हमले की मजम्मत की है। वजारत खारजा ने एक बयान में कहा है कि इस बहरी जहाज में सवार 11 भारतीय शहरियों में से 10 को बचा लिया गया है जबकि एक भारतीय शहरी लापता बताया गया है। वजारत ने कहा है कि ओमान में भारतीय सिफारतखाना सूरत हाल पर करीबी नज़र रखे हुए है और तलाश और बचाव की कार्रवाई में ओमान के हुक्काम के साथ तालमेल कायम किए हुए है। भारत ने ओमान के हुक्काम की मदद के लिए उनका शुक्रिया अदा किया है। साथ ही भारत ने खित्ते में कमर्शियल बहरी जहाज़ों पर बार बार हमले होने के वाकयात पर तशवीश का इजहार भी किया है। उसने फौरी तौर से कशीदगी दूर किए जाने और मुज़ाकरात के जरिए सिफारती हल निकाले जाने की अपील दोहराई है ताकि खित्ते में अमन व इस्तेहकाम बहाल हो सके। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का 6 रोज़ा दौरा कामयाबी से मुकम्मल करने के बाद नई दिल्ली वापस पहुँच गए हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: अपने 3 मुल्की दौरे के पहले मरहले में जनाब मोदी ने इंडोनेशिया का दौरा किया जिसके दौरान वज़ीर आज़म मोदी ने इंडोनेशिया के सदर के साथ 2 तरफा बातचीत की और दोनों मुल्कों के दरमियान शराकत दारी की पेशरफ का जायजा लिया। दोनों मुल्कों ने दिफा, अहमियत के हामिल और नायाब मादनियात, ज़रात, बहरी सिक्योरिटी और खला के शोबों में समझौतों और मुफाहमतनामों का तबादला किया। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म मोदी को इंडोनेशिया के आला तरीन सिविलियन एजाज से सरफराज किया गया। अपने दौरे के दूसरे मरहले में जनाब मोदी ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न पहुंचे जहां उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम के साथ 30वीं भारत ऑस्ट्रेलिया सालाना सरबरा कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन सुपर ने भारत के नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 50 करोड़ ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स की सरमायाकारी का ऐलान किया। अपने 3 मुल्की दौरे के आखिरी मरहले में वजीर आजम मोदी न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड पहुंचे जहां दोनों मुल्कों के वजीर आजम ने भारत न्यूजीलैंड स्ट्रेटेजिक साझेदारी के कायम का ऐलान किया और 2 तरफा तिजारत को बढ़ाकर साल 2030 तक 2 गुना तक करने का हदफ मुकर्रर किया। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं अब्दुल मालिक।
0: BJP ने कहा है कि भारत बहरे हिंद और भारत बहरुल काहिल खित्ते में एक इस्तेहकाम कायम करने वाली ताकत के तौर पर उभरा है। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पार्टी के तर्जुमान संबित पात्रा ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हाल ही में सेशेल्स और इंडोनेशिया के दौरे पर गए थे ताकि क्लिदी ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान आज़ाद तिजारत का समझौता एक अहम कामयाबी है। जनाब संबित पात्रा ने मजीद कहा कि दोनों मुल्कों ने जल्द से जल्द समझौते को नाफिज करने से इत्तेफाक किया है। उन्होंने इसे भारत के लिए एक बड़ा क्लीदी और इक्तसादी संगे मील करार दिया। उन्होंने वज़ीर आज़म के इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के 10 अहम निकात को उजागर किया। इनमें बहरे हिंद, भारत बहरुल काहिल क्लीदी इतिहाद, दिफाई और बहरी इश्तराक, अहम मादनियात के शोबे में ताउन, तवानाई की यकीनी फराहमी, डिजिटल अवामी बुनियादी ढांचा और तालीमी साझेदारी शामिल हैं।
2: हम एक स्टेबिलाइजिंग फोर्स बनके इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशन में आज उभर पाए हैं, इसी को प्रधानमंत्री एक साथ लेके आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपने परिश्रम से, अपने स्टेट्समैनशिप से, अपने पॉलिसी को भारत में लागू करके बाकी देशों को दिखाया और सभी देशों ने एक्सेप्ट किया कि यस लेट दिस बी द फ्रेमवर्क, लेट इंडिया डिसाइड द फ्रेमवर्क, हम इस फ्रेमवर्क पे एक लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन। आप सोचिए ये कितनी बड़ी जीत है।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज गुजरात में अहमदाबाद म्यूनिसिपल कारपोरेशन के कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संगे बुनियाद रखा, जिनकी मालियत 405 करोड़ रुपए है। इस मौके पर जनाब अमित शाह ने एक पेड़ माँ के नाम मुहिम के तहत दरख्त लगाने की एक बड़ी मुहिम का आगाज किया और उनके लोकसभा हलके गांधीनगर में इस मौके पर 125 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए गए। वहां मौजूद लोगों से खिताब करते हुए वजीर दाखिला ने एक तवील मुद्दती माहौलियाती खाके को उजागर किया ताकि 2029 के इंतखाबात होने तक इस चुनाव हलके में 20% इलाके को सरसब्जो शादाब बनाया जा सके। साथ ही उन्होंने लोगों पर जोर दिया कि वो शमसी रूफ टॉप्स अपनाएं। महाराष्ट्र के पुणे जिले में मोशी के कूड़े करकट के डिपो के हादसे में मरने वालों की तादाद बढ़कर 9 हो गई है। आज बचाव कार्रवाई के चौथे दिन 7 और अफराद की लाशें निकाली गई हैं। एक शख्स अब भी कूड़े कचरे के ढेर के नीचे फंसा हुआ है और तलाश की कोशिशें जारी हैं। यह हादसा इस महीने की 8 तारीख को उस वक्त पेश आया था जब पुणे ज़िले में मोशी के मुकाम पर कूड़े कचरे का एक बड़ा टीला फाजिल मादों और कचरे वगैरह से तवानाई बनाने के प्रोजेक्ट की इंतजामी इमारत पर ढह गया था और 23 अफराद फंस कर रह गए थे। अमेरिका ने ईरान पर आज सुबह फिर फजाई हमले किए। अबनाए हुरमुज में एक कमर्शियल बहरी जहाज पर ईरान के हमले के बाद अमेरिका ने ये फजाई हमले किए हैं। मालूम हुआ है कि कमर्शियल बहरी जहाज में हमले के बाद आग लग गई और इसके अमले के अहलकारों को बहरी जहाज से उतरना पड़ा। अमेरिका की मरकजी कमान ने कहा है कि उसने ईरान के तकरीबन 140 फौजी ठिकानों को निशाना बनाया है जिसमें मिजाइल, ड्रोन और मवासिलाती मराकज शामिल हैं। ईरान ने बहरैन, कुवैत, कतर और मुत्तहिद अरब अमारात को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमलों से जवाबी कार्रवाई की। ईरान ने उर्दुन में भी अमरीका के एक फौजी ठिकाने पर हमले करने का दावा किया है। मुलाजमीन की प्रोविडेंट फंड तंजीम EPFO ने आम रियायत की स्कीम 2026 का आगाज किया है ताकि मुस्तसना प्रोविडेंट फंड चलाने वाले इदारों को अपने दर्जे को बाजाबता शक्ल देने का एक वक्ती मौका फराहम किया जा सके। लेबर और रोजगार महकमे की वजारत ने कहा है कि मजकूरा स्कीम 6 महीने की मुद्दत के लिए बरकरार रहेगी। मजकूरा स्कीम का इतलाक उन इदारों पर होगा जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत तस्लीम शुदा प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट चला रहे हैं। वजारत ने कहा है कि अहल इदारों को ईमेल के जरिए बाजाबता दरख्वास्त मुतालिका इलाकाई दफ्तर को पेश करना होगी। कतर के साबिक अमीर शेख हमद बिन खलीफा सानी का इंतकाल हो गया है। वो 74 साल के थे। उन्होंने खलीजी मुल्क कतर को आलमी सतह पर सिफारतकारी, मीडिया और सरमायाकारी के शोबों में एक सरकर्दा मुल्क बनाने में अहम किरदार अदा किया। शेख हमद ने कतर पर 18 साल तक हुकूमत की जिसके बाद 2013 में रजाकाराना तौर पर अपने बेटे को इख्तदार सौंप दिया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर के वालिद शेख हमद बिन खलीफा सानी के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि शेख हमद बिन खलीफा सानी एक नज़रिया साज रहनुमा थे जिन्होंने कतर को तरक्की और खुशहाली की नई बुलंदियों पर पहुँचाया। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में आज मर्दों के सिंगल्स फाइनल में आलमी नंबर एक यानिक सिनर का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 8:30 बजे शुरू होगा। आज ही ख्वातीन डबल्स का फाइनल भी खेला जाएगा जो भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 5:30 बजे शुरू होगा। फीफा वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। बुध के रोज पहले सेमीफाइनल में फ्रांस का मुकाबला स्पेन से होगा। दूसरा सेमीफाइनल जुमेरात को खेला जाएगा जिसमें इंग्लैंड और अर्जेंटीना की टीमें आमने सामने होंगी। खास खास खबरें एक बार फिर। भारत ने ओमान के साहिल के नज़दीक कमर्शियल बहरी जहाज GFS गैलेक्सी पर हमले की मजम्मत की है। 10 भारतीय अफराद को बचा लिया गया है जबकि एक लापता है। भारत ने खित्ते में कमर्शियल बहरी जहाज़ों पर बार बार हमले होने पर तशवीश का इजहार किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अपने दौरे में कई समझौते तय करने के बाद नई दिल्ली वापस आ गए हैं। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने अहमदाबाद में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संगे बुनियाद रखा, और विंबलडन टेनिस में आज शाम मर्दों के सिंगल्स फाइनल में यानिक सिनर का मुकाबला अलेक्जेंडर ज़वेरेव से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
3: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम सुनील वर्मा विद द मिड डे न्यूज। The headlines. India condemns attack on commercial vessel GFS Galaxy off coast of Oman. 10 Indians rescued, one reported missing. New Delhi expresses concern over continuing attacks on commercial shipping in the region. Prime Minister Narendra Modi returns to New Delhi after concluding several agreements during his visit to Indonesia, Australia and New Zealand. Home Minister Amit Shah inaugurates and lays foundation stones of several development projects in Ahmedabad. Employees Provident Fund Organization introduces a six-month amnesty scheme for establishments operating private Provident Fund Trust to regularize their status. In Wimbledon, Jannik Sinner to lock horns with Alexander Zverev for men's singles title this evening. And in FIFA World Cup, England and Argentina enter semi-finals. India has condemned the attack on the commercial vessel GFS Galaxy off the coast of Oman today. The

0: trusts to regularize their status retrospectively. It is intended to bring such trusts within a uniform statutory framework while ensuring compliance with the applicable legal provisions. For employees, the scheme is expected to provide a greater certainty regarding the legal status of the employer's provident fund trust. It also requires that member accounts should have received contributions and interest at par with or better than the statutory EPFO rates for the prescribed relief to apply. By regularizing exempted PF trusts, the scheme is also expected to make the administration of provident fund benefits more streamlined and legally compliant. With Devendra Kumar, this is Vishnu PS for Akashwani News, Delhi.
1: In tennis, two Wimbledon titles will be decided today as the men's singles and women's doubles finals are played. World number one Jannik Sinner will face Germany's Alexander Zverev in the men's singles final at 8:30 p.m. Indian Standard Time. Sinner booked his place in the title clash with a straight sets victory over Novak Djokovic, while Zverev entered his first Wimbledon final after defeating British wildcard Arthur Ferry. The women's doubles final will begin at 5:30 p.m. IST. In the FIFA World Cup, England booked their semi-final berth with a 2-1 extra time win over Norway, while Argentina entered the semi-final defeating Switzerland 3-1 this morning. In the first semi-final, France and Spain will face off on Wednesday. The match will kick off at 12:30 a.m. Indian Standard Time. France reached the semi-finals after defeating Morocco 2-0 in the quarter-finals, while Spain advanced with a hard-fought 2-1 victory over Belgium. The second semi-final will be played on Thursday between England and Argentina at 12:30 a.m. Indian time. The winners of the two semi-finals will meet in the FIFA World Cup final on July the 20th at New York, New Jersey Stadium. The losing teams will play the third place playoff on July the 19th in Miami. The India Meteorological Department has issued an orange alert for heavy to very heavy rainfall over Assam, Meghalaya, Bihar, Sub-Himalayan, West Bengal and Sikkim today. It has predicted heavy rainfall conditions at isolated places over Arunachal Pradesh, Chhattisgarh, East Uttar Pradesh, Gangetic West Bengal and Himachal Pradesh today. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India condemns attack on commercial vessel GFS Galaxy off coast of Oman. 10 Indians rescued, one reported missing. New Delhi expresses concern over continuing attacks on commercial shipping in the region. Prime Minister Narendra Modi returns to New Delhi after concluding several agreements during his visit to Indonesia, Australia and New Zealand. Home Minister Amit Shah inaugurates and lays foundation stones of several development projects in Ahmedabad. Employees Provident Fund Organization introduces a six-month amnesty scheme for establishments operating private Provident Fund Trust to regularize their status. In Wimbledon, Jannik Sinner to lock horns with Alexander Zverev for men's singles title this evening. And in FIFA World Cup, England and Argentina enter semi-finals. And with that, we end the midday news.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत जीएफएस गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की। 10 भारतीय सुरक्षित बचाए गए, एक लापता। क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों पर भारत ने चिंता जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे, इस दौरान कई समझौते हुए। गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने निजी भविष्य निधि ट्रस्ट संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने के लिए 6 महीने की माफी योजना शुरू की। विंबलडन टेनिस में आज शाम पुरुष सिंगल्स के फाइनल मुकाबले में यानिक सिनर और अलेक्जेंडर ज्वेरेव होंगे आमने सामने। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड और अर्जेंटीना ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। भारत ने आज ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत जीएफएस गैलेक्सी पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक अब भी लापता है। मंत्रालय ने बताया कि ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों पर चिंता जताई है। मंत्रालय ने तनाव तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए जारी वार्ता को जल्द पूरा करने का आह्वान किया है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप क्षेत्र के समुद्री मार्गों पर निर्बाध और सुरक्षित नौवहन तथा व्यापार जल्द से जल्द बहाल किए जाने की बात कही है। अमरीका ने आज सुबह ईरान पर फिर से हवाई हमले किए हैं। ये हमले ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर हमला किए जाने के बाद किए गए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि हमलों में ईरान के लगभग 140 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इस बीच ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड ने अगली सूचना तक होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की घोषणा की है और चेतावनी दी है कि यदि अमरीकी हमले जारी रहे तो वो भी जवाबी कार्रवाई करेगा। विदेश मंत्रालय ने वर्ष 2017 में जारी यमन यात्रा संबंधी अधिसूचना वापस ले ली है। ये अधिसूचना यमन में गृहयुद्ध और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के कारण भारतीय नागरिकों की यात्रा पर प्रतिबंध लगाने के लिए जारी की गई थी। हालांकि मंत्रालय ने परामर्श जारी कर भारतीय नागरिकों को यमन की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की सफल यात्रा पूरी कर स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी की इस महत्वपूर्ण यात्रा की प्रमुख उपलब्धियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 3 देशों के दौरे के पहले चरण में इंडोनेशिया का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और दोनों देशों के बीच चल रहे सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दोनों देशों ने रक्षा, दुर्लभ खनिज, कृषि, समुद्री सुरक्षा और अंतरिक्ष जैसे कई क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान बिंतांग आदिपूर्ण से सम्मानित किया गया। इस दौरे के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, जहां उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ 3rd भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस यात्रा के दौरान ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम की आपूर्ति का रास्ता भी साफ हुआ। साथ ही ऑस्ट्रेलिया सुपर ने भारत के नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 50 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश की घोषणा की। अपने दौरे के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत की घोषणा की। इसके अलावा दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक आपसी व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य तय किया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि भारत हिंद महासागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक मजबूत और विश्वसनीय शक्ति के रूप में उभरा है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा से भारत के रणनीतिक संबंध और मजबूत हुए हैं।
4: हम एक स्टेबिलाइजिंग फोर्स बनके इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशन में आज उभर पाए हैं, इसी को प्रधानमंत्री एक साथ लेके आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपने परिश्रम से, अपने स्टेट्समैनशिप से अपने पॉलिसी को भारत में लागू करके बाकी देशों को दिखाया और सभी देशों ने एक्सेप्ट किया कि यस, लेट दिस बी द फ्रेमवर्क, लेट इंडिया डिसाइड द फ्रेमवर्क। हम इस फ्रेमवर्क पे एक लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन, आप सोचिए ये कितनी बड़ी जीत है।
2: श्री संबित पात्रा ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने बताया कि भारत और ऑस्ट्रेलिया ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया है। इसके तहत दोनों देशों के युद्धपोत एक दूसरे के डॉक पर सर्विसिंग करा सकेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने माफी योजना 2026 शुरू की है। इसके तहत छूट प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट चलाने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने का एक मुश्त अवसर दिया गया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने बताया कि ये योजना 6 महीने तक लागू रहेगी। इसका लाभ उन प्रतिष्ठानों को मिलेगा जो आयकर अधिनियम

0: लाना और सभी लागू कानूनी प्रावधानों के पालन को सुनिश्चित करना है। कर्मचारियों के लिए यह योजना उनके नियोक्ता के भविष्य निधि ट्रस्ट की कानूनी स्थिति को लेकर अधिक स्पष्टता और भरोसा प्रदान करेगी। योजना के तहत निर्धारित राहत का लाभ तभी मिलेगा जब सदस्यों के खातों में निर्धारित अवधि के दौरान अंशदान जमा किया गया हो और उस पर EPFO की वैधानिक ब्याज दर के बराबर या उससे अधिक ब्याज दिया गया हो। छूट प्राप्त PF ट्रस्टों को नियमित किए जाने से भविष्य निधि लाभों का प्रबंधन अधिक सरल, सुव्यवस्थित और कानूनी प्रावधानों के अनुरूप होने की भी उम्मीद है। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: योजना का लाभ लेने के लिए पात्र प्रतिष्ठानों को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में ईमेल के माध्यम से औपचारिक आवेदन भेजना होगा। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार के व्यापक पौधारोपण अभियान के अंतर्गत 35 करोड़ पौधे लगाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सतत भविष्य सुनिश्चित करने तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी का तापमान बढ़ने को लेकर चिंतित है।
2: वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा, वनों की कटाई, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में 405 करोड़ रुपए की लागत वाली नगर निगम की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से अधिक पौधे लगाए गए। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: गृह मंत्री ने बरगद, पीपल, जामुन और अर्जुन जैसे स्वदेशी पौधे लगाने पर जोर दिया, जिससे शहर के तापमान में 5% की कमी आएगी और भावी पीढ़ियों के लिए एक रहने योग्य पर्यावरण सुनिश्चित होगा। उन्होंने पर्यावरण स्थिरता में योगदान देने के लिए हर घर और आवासीय सोसाइटी से सोलर रूफटॉप अपनाने का भी आह्वान किया। इस पर्यावरण अभियान के तहत आज 101 नए ऑक्सीजन पार्क का भी उद्घाटन किया गया और उनकी जानकारी देने वाली एक विशेष ई बुक भी जारी की गई। सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए AMTS और BRTS के बेड़े में आज 333 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल की गई, जिससे अहमदाबाद BRTS देश का पहला 100% इलेक्ट्रिक और शून्य प्रदूषण वाला बेड़ा बन गया है। अपर्णा खोंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज कहा कि देश के समाज सुधारकों की महान विरासत का सम्मान करना और उसे बनाए रखना हर नागरिक का कर्तव्य है। श्री राधाकृष्णन ने नई दिल्ली के द्वारका में मन्नम इंटरनेशनल सेंटर में मन्नम स्मृति मंडपम का उद्घाटन के अवसर पर यह बात कही। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत एक पौधा भी लगाया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने आज बताया कि फू क्वोक द्वीप के निकट कल हुई नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर हो ची मिन सिटी ले जाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने कहा कि वहां आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पार्थिव शरीरों को भारत लाया जाएगा। इससे पहले दूतावास ने बताया था कि नौका दुर्घटना में घायल 15 भारतीयों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और वे भारत लौट रहे हैं। दक्षिण की कोकिला के रूप में प्रसिद्ध रही गायिका एस जानकी अम्मा का कर्नाटक के मैसूर में एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वे 88 वर्ष की थीं।
4: छह दशक से अधिक लंबे अपने संगीत सफर में एस जानकी ने कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी सहित कई भाषाओं में लगभग 48,000 गीतों को अपनी आवाज दी। अपनी बहुमुखी गायकी और भावपूर्ण प्रस्तुति के कारण उन्हें नाइटिंगेल ऑफ द साउथ के नाम से जाना जाता है। एस जानकी को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका के लिए 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुए। इसके अलावा उन्हें 33 राज्य फिल्म पुरस्कार भी मिले। वर्ष 2013 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इस जानकी के निधन से भारतीय फिल्म संगीत जगत ने एक ऐसी महान स्वर साधिका को खो दिया है जिनकी आवाज आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा और विरासत बनी रहेगी।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एस जानकी अम्मा का निधन संगीत और संस्कृति जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्होंने खाड़ी देश को कूटनीति, मीडिया और निवेश के क्षेत्र में प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित किया था। उन्होंने अल जजीरा समाचार नेटवर्क की भी शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के पूर्व अमीर शेख के निधन पर दुख व्यक्त किया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ है आनंद पाठक।
1: फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहला सेमीफाइनल बुधवार को फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 12:30 बजे से शुरू होगा। दूसरा सेमीफाइनल गुरुवार को इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड ने नॉर्वे को अतिरिक्त समय में 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की, जबकि अर्जेंटीना ने आज सुबह स्विट्जरलैंड को 3-1 से हराया। दोनों सेमीफाइनल मुकाबलों के विजेता 20 जुलाई को न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में खिताबी मुकाबले में आमने सामने होंगे। सेमीफाइनल की दोनों पराजित टीमें 19 जुलाई को मियामी में तीसरे स्थान के लिए प्लेऑफ खेलेंगी। टेनिस में आज विंबलडन के पुरुष सिंगल्स और महिला डबल्स के फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। पुरुष सिंगल्स के फाइनल में विश्व के नंबर एक खिलाड़ी यानिक सिनर का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे शुरू होगा। महिला डबल्स के फाइनल में चीन की गुओ हनयू और फ्रांस की क्रिस्टीना लादेनोविक की जोड़ी का मुकाबला कनाडा की ग्रेबियेला ट्रोवास्की और ब्राजील की लुइसा स्टेफनी की जोड़ी से होगा। ये मैच शाम 5:30 बजे खेला जाएगा।
0: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, बिहार, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गंगा के मैदानी इलाकों, पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर आज तेज वर्षा हो सकती है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, पंजाब और उत्तराखंड में भी आज इसी तरह की स्थिति बने रहने का अनुमान है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की। 10 भारतीय सुरक्षित बचाए गए, एक लापता। क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों पर भारत ने चिंता जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। इस दौरान कई समझौते हुए। गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने निजी भविष्य निधि ट्रस्ट संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने के लिए 6 महीने की माफी योजना की शुरुआत की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Miri wave kilohertz 6.5 yang meters ban ngib ge ge juge kepsi tang chuzurgu yang fm megahertz ge nang chik tang chuzur chik tong meng aji akash wani leni jin chik tain ni mi chu tut ni stang pecha du ka sada chu tut ni stang skar mang ab chung a chok pa la dak se lorik sanchis la pulin chang me sang sngol la rek zendam chu se salgane ilubo sanasat